0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है? रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

0: उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाया हूँ मुँह धो लो।
1: मस्त मौला गौरव।
0: हाँ जी, गुडी गुड मॉर्निंग मस्त मौला गौरव। सुबह सवेरे आजकल आपको जगाने आ जाता है क्योंकि आफरीन ने मुझे ये छोटी सी जिम्मेदारी दी एक छोटे से वेकेशन पर जाते टाइम की, गौरव प्लीज तुम मेरा मॉर्निंग संभाल लेना और ईशा तुम्हारा इवनिंग संभाल रही है। बिल्कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब मैं सुबह सवेरे उठने लगा तो मुझे दुनिया और ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। लेकिन कतर में आजकल सुबह नहीं होती, सीधे दोपहर होती है। मौसम में सूरज चाचू इतनी चमकान दे रहे। फिलहाल सुबह सवेरे आ गया हूं तो ये जरूर कहूंगा कि जिंदगी में कभी भी किसी बात से घबराना नहीं, क्योंकि घबराने से सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ेगा बल्कि उसका सामना करो डटकर, इससे आपका जज्बा जोश और बढ़ेगा। इस उम्मीद में कि हर संकट के आगे बहुत सारी खुशियां हैं, यानी कि हर परेशानियों के आगे बहुत सारी मंजिलें हैं जो आपको सफलता की तरफ ले जाएंगी। मैं भी ऐसे ही डरता था जब मेरे रिजल्ट में नंबर कम आते थे, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता था किसी तरह पास होकर अगली क्लास में चला जाता था। वही जिंदगी में होता रहेगा, आप आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे देखना नहीं है और कभी अपने आप को फेलियर मानना ही नहीं है, वरना हम यहाँ थोड़े होते। सोचिए न क्लास 10th में फर्स्ट डिवीजन पा पाए, न क्लास 12th में। 89.6 मिर्ची 1, गुड मॉर्निंग मिर्ची थॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La vieva la murga.
0: Milci, murga.
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: अच्छा अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
2: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा।
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई, मैं सर्विस में लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा है तू?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: यार यार। ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
8: कम है के?
9: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: गुडी गुड मॉर्निंग, सुबह सवेरे सैटरडे 25 जुलाई कौन आ गया?
1: मस्त मौला गौरव।
0: बीते पूरे हफ्ते आपने मुझे सुना और हफ्ते का बेस्ट लेकर एक बार फिर से सैटरडे की सुबह सुबह मिर्ची मॉर्निंग्स में आ गया हूँ, जहाँ पर सबसे पहले बात करूंगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 को मिले नए चैंपियन की। संडे को फाइनल था स्पेन वर्सेज अर्जेंटीना के बीच। अर्जेंटीना बैक टू बैक दूसरी टाइटल को आय कर रहा था कि काश उन्हें यह बैक टू बैक टाइटल मिल जाए और मेसी पर गोट वाली डिबेट ही जीवन भर के लिए समाप्त हो जाए। पर एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन के फरान टोरेस के उस एक्स्ट्रा टाइम गोल से अर्जेंटीना का सपना चूर चूर हो गया और स्पेन ने 2010 के बाद एक बार फिर से खिताब जीत लिया। लेकिन ये वर्ल्ड कप बहुत मायने में अलग है। ये ऐसा फाइनल था जो इससे पहले कभी भी फुटबॉल हिस्ट्री में नहीं देखा गया, जहां पर सामने वाली टीम फाइनल में पहुंच गई लेकिन स्पेन के गोल पर एक भी अटेम्प्ट ना कर पाना अर्जेंटीना के लिए बड़ा ही दर्दनाक रहा और उनके फैंस का दिल ऐसा टूटा पूछो मत। वेल, लायनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार एंड मैनुअल नोयर के अलावा मेक्सिको के वो गोलकीपर, ये कुछ प्लेयर्स थे जो शायद हम एक आखिरी बार मैदान पर दिखाई दे रहे। इसी उम्मीद के साथ कि फुटबॉल का एक पूरा जनरेशन अब समाप्त हो रहा और नई जनरेशन के हाथ में चीजें जा रही, जहां पर एम्बापे सुपरस्टार एंड उनका साथ देने अब लामिन यमाल एंड कुछ और नए सुपरस्टार्स, सबको ऑल द बेस्ट। पर यही तो नीति है भैया खेल में, जो आया है एक दिन रिटायर हो गई। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: नीति मोहन की आवाज में गाना खत्म हुआ और हम कहेंगे हेली वालों ने निकाला पासपोर्ट रैंकिंग। हाँ जी, मस्त मौला गौरव आपके साथ, और इतने कहना चाहता हूँ कि हेली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की रैंकिंग के साथ आ गया है। जुलाई के मंथ में इसको लॉन्च कर दिया गया है, और दुनिया का कौन सा पासपोर्ट कितना ताकतवर है ये बताने वाली रैंकिंग ये होती है, जहां पर कतर ने अब टॉप 50 में अपनी जगह बना ली है। Yes, कतर को मिली है इस रैंकिंग में पोजीशन नंबर 48, और अब कतरी सिटीजंस कैन गो अप टिल 112 डेस्टिनेशन इधर वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा, एंड इसमें कुछ यूरोप के शेंजन एरिया भी हैं। वेल, कतरी पासपोर्ट हर साल इंप्रूव होता जा रहा है, इस बार ये टॉप 50 के अंदर आ चुका है। अगर गल्फ नंबर वन मजबूत पासपोर्ट की बात की जाए तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के सिटीजन के लिए मौका और बड़ा है, क्योंकि उन्होंने जापान एंड साउथ कोरिया के साथ दुनिया में दूसरा सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाली जो पोजीशन है वो पाई है, और अब वो दुनिया के 188 डेस्टिनेशंस पे जा सकते हैं। विद नंबर वन की पोजीशन सिंगापुर के पास, जिनके पासपोर्ट की ताकत के साथ उनके सिटीजंस 192 डेस्टिनेशंस पर 192 कंट्रीज में जाकर घूम पाएंगे। इन सब के बीच अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया को रैंकिंग मिली है 75th इसी पासपोर्ट रैंकिंग में, जहां पर हम 56 कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल, वीजा फ्री या फिर ई वीजा के साथ जा सकते हैं। वहीं पाकिस्तान नंबर 98 पर टॉप 100 में विद 31 डेस्टिनेशंस इधर वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल या फिर ई वीजा। यही बता रहा है कि अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं अपने पासपोर्ट के साथ तो अच्छा बिहेव कीजिए, वो भी मायने रखता है। याद है ना पिछले दिनों कैसे कहां का किस किस कंट्री में हम क्या क्या करके आए, वो भी देखा जाता है। अगर हमने कुछ गड़बड़ किया है तो हमारी रैंकिंग और नीचे जाएगी, इस बात को समझिए। And we are responsible tourists in any country. 89.6 Mirchi, when it's hot.
1: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: यार आजकल ना जब सुबह सुबह आता हूँ तो गुड मॉर्निंग बोलने के लगा लगता है गुड आफ्टरनून ही बोल दूँ क्या? अरे गर्मी का पारा तो देखिए, सूरज चाचू की ब्राइटनेस ऐसी बढ़ी कि कम होने का नाम नहीं ले रही।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: अब देखिए दिन का मैक्सिमम तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, दिन का मिनिमम अराउंड 32 आएगा, एंड इन सब के बीच गर्मी का ये जो पारा है ये तब और बढ़ जाता है जब लू के थपेड़े इसके साथ रहते हैं। हालांकि आज हवा उतनी तेज नहीं है, 5-15 किलोमीटर पूरे दिन में चलेगी, पर बड़ी बात यह है जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो हमारे छक्के छूट जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं भाई साहब। और ये ह्यूमिडिटी से बचने का एक ही तरीका है, भर भर के पानी पियो, बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाओ। और इस उम्मीद के साथ कि एक एक दिन कर हम अब अगस्त की तरफ बढ़ रहे हैं और अगस्त से सितंबर में और बेहतर होगा, सितंबर से अक्टूबर में, दिसंबर आते तक सब ठीक हो जाएगा। एक एक महीना निकालते जाओ। मस्त आगे आपके साथ बढ़ता है। गुडी गुड मॉर्निंग मिर्ची मॉर्निंग सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100-0813.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
2: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगैन एज रेडियो जॉकी। करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
3: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था। बहुत मजा आता था, मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
1: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6
5: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Mirchi Helpline?
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: यार ये धूप इतनी है कि साइलेंसर से ज्यादा तो सीट गर्म हो जाती है, क्या करूं?
1: अरे गोचू, तो एक काम करना, साइलेंसर पे बैठ के चला जा, सिंपल।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: जैनी, तुमने मैंगो खूब खाया, अब खजूर खाने की बारी।
2: मस्त मौला गौरव,
1: 89.6 मिर्ची 1 पर मैं हूँ आरजे मस्त मौला गौरव। सूख वाकिफ की गलियों में जहाँ खुशबू पहले आम की आ रही थी, इंडिया और पाकिस्तान के आमों की खुशबू, अब वहाँ आपको खजूर की खुशबू आएगी। यस, क्योंकि कतर के लोकल फार्म में लोकली ग्रोन डेट्स जो हैं वो अलग अलग खजूरों की वैरायटी अब हमें ईस्टर्न स्क्वायर सूख वाकिफ में मिलने वाली है और इसकी शुरुआत होने जा रही है। एंड 25 जुलाई से 10 अगस्त तक अब ईस्टर्न स्क्वायर सूख वाकिफ में मिलेगा आपको कतर के अलग अलग फार्म से आई खजूरों की अलग अलग वैरायटी। एंड आप इन लोकली ग्रोन डेट्स को बेस्ट प्राइसेस पे ले सकते हो। संडे टू थर्सडे यानी कि वीकडेज में टाइमिंग रहेगी 4 PM टू 9 PM एंड ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे ये रात 10 बजे तक रहेगा। अलग अलग वैरायटी, उसके डेट्स के और भी ढेर सारे प्रोडक्ट, ये सब कुछ आपको मिलेंगे, बिल्कुल फ्री है, कहीं नहीं जाना है, बस गाड़ी कहीं अच्छी जगह पार्क करनी है और चले आना। इवन सूख वाकिफ की मेट्रो भी आपके लिए बड़ा ईजी एक्सेस है। इसी उम्मीद में कि आप इस खजूर फेस्टिवल में जाकर इस डेट में अपना मुंह मीठा करा के लौटेंगे, भले ही जिंदगी में किसी भी डेट पर अगर आप गए और मुंह खट्टा हुआ तो यहां मीठा ही होगा। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़िया। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: अरे यार इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
6: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
5: योर स्पेशल ऑफर?
6: हाँ ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है, ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
5: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
6: बिल्कुल योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
5: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
7: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
8: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: क्या आप छुट्टी पे नहीं गए लेकिन एक शॉर्ट ट्रिप पे जाना चाहते हैं?
1: मस्त मौला गौरव।
2: तो ऑब्वियसली मतलब आपने छुट्टी नहीं प्लान की है लेकिन आप एक शॉर्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं और वो भी भूसामरा बॉर्डर के थ्रू, तो हम वहाँ पर थोड़ा सा आपका टाइम और बचा देते हैं ताकि आप फुल एंजॉय कर पाओ अपनी शॉर्ट ट्रिप पर। यस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अर्ज किया उन सारे ट्रैवलर से जो भूसामरा बॉर्डर के थ्रू कहीं भी प्लान कर रहे हैं अपने शॉर्ट ट्रिप वेकेशन के लिए, उनको प्री रजिस्ट्रेशन करना है मेत्राश ऐप पर, जिससे कि उनका ट्रैवल टाइम जो है वो बच जाए। क्योंकि याद रखिए, आपके बॉर्डर पर जो समय लग रहा है ना, उसको स्पीड अप करता है अगर आप मेत्राश पर प्री रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। इसमें आपको कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है, आप कंजेशन का हिस्सा नहीं बनते, आप वहां लाइन में लगते और आपके पास जल्दी से बॉर्डर पार करने का मौका मिल जाता है। पीक हॉलीडे सीजन चल रहा है, ऑलमोस्ट सब लोग इसी सोच के साथ जा रहा है कि चलो बॉर्डर पर जाके कर लेंगे। ऐसे में आप अगर इलेक्ट्रॉनिक प्री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको सिर्फ सबमिट करनी अपनी ट्रिप डिटेल्स एंड कुछ रिक्वायर्ड प्रोसीजर जो है वो पूरे करते ही आप बॉर्डर आराम से क्रॉस कर लेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी इंफॉर्मेशन एडवांस में ही इस डिजिटल प्री रजिस्ट्रेशन पे करा लो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम आराम से एंजॉय कर पाओ और बॉर्डर पर आपको इतना टाइम स्पेंड ना करना पड़े जो बिना प्री रजिस्ट्रेशन किए गए लोग जाकर कर रहे हैं। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव कहीं नहीं गया है, क्योंकि मैंने यह माना है जब लोग वेकेशन पर जाएं तो तुम उनकी जिम्मेदारी संभालो, इसीलिए तो मिर्ची मॉर्निंग में आफरीन वेकेशन पे गई हुई है। मस्त मौला गौरव का दिल तो आपके साथ लगता है दोस्त, कहीं जा रहे हैं तो हमको भी ले चलिए। मिर्ची इट्स हॉट।
3: मिर्ची मॉर्निंग brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Dosti kai ko sule madam. No sorry, no thank you.
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
4: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: गर्मी चाहे जितनी भी हो, एसी उसे सुपर कूल ही रखता है। सुबह सवेरे गुड मॉर्निंग और मिर्ची मॉर्निंग में मस्त मौला गौरव। सैटरडे में आपको बहुत सारी बातें बताने फिर से आ गया, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि समर जिस तरह से हमारे कथन में पढ़ते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि समर के टाइम पे ना यहाँ पर सीधे दोपहर होती है, मॉर्निंग तो नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद कतर की कुछ ऐसी स्पेसेस हैं जहां पर आप ओपन एयर में भी एकदम एंजॉय करोगे, क्योंकि पूरी की पूरी सड़कें, पूरा का पूरा ये माहौल जो है आपके लिए एकदम एयर कंडीशन स्टाइल में बनाया गया है। एंड सबसे पहले बात करेंगे हम गेवान आइलैंड की, जहां पर पर्ल में आप जाते हैं तो 7,360 स्क्वायर मीटर के साथ दुनिया का लार्जेस्ट आउटडोर एयर कंडीशन मॉल यहां पर मिलेगा, 100 रिटेल एंड डाइनिंग एक्सपीरियंसेस। इसके अलावा सेंट्रो जो कि रफदतल हमामा में आजकल नया हैंगआउट प्लेस बना है, वहां पर भी आपको एकदम खूबसूरत एसी के साथ माहौल और व्यू मिलने वाला है। कतारा कल्चरल विलेज में भी 21 हाई स्ट्रीट पर आपको लग्जरी रिटेल, डाइनिंग एंड पब्लिक स्पेसेस पर आउटडोर कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ कूल रखा जा रहा है। प्लासमंदम मॉल में भी सेम है, अल हज़्म मॉल, वेस्ट वॉक, टोर्नाडो ड्यून प्लाजा, लुसेल बुलेवार्ड, और क्या चाहिए आपको। कतर में आप गर्मी में भी सुपर कूल एंजॉय कर सकते हैं, बस आप बहाना ढूंढते रह जाते हैं, अब वो बहाना नहीं चलेगा। मैंने इतनी सारी स्पेसेस बताई है, आप पूरा समर एक एक हफ्ते एक एक जगह घूम के बिता लोगे। 89.6 मिर्ची वन, वैसे गर्मी तो है, ऐसे में लस्सी पीने का अलग ही मजा है, मैं पी के आ रहा हूँ। इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

ना इस मामले में आपको बिल्कुल नादानी नहीं करनी है। मस्त मौला गौरव आपके साथ है, और नादानी हम तब करते हैं जब हम जानकर कुछ करते हैं, तो उसे नादानी नहीं शैतानी कहते हैं। और हमें पता है कि फ्यूचर कैसा होने वाला है। प्लीज आपको कुछ हैबिट्स को बदलना है, इन छोटी छोटी हैबिट्स को। मिर्ची मॉर्निंग में मस्त मौला गौरव आपके साथ है। जैसे चार्जर प्लग में लगा रह गया, टीवी ऑन है, रात भर स्टैंड बाय पर चल रहा है, माइक्रोवेव का स्विच ऑन कर दिया तो बंद ही नहीं कर रहे, ये कुछ छोटी चीजें हैं, हमें लगता है इनसे क्या ही फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा सर, क्योंकि करामा भी कह रहा है कि अगर आप स्टैंड बाय पावर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो आपके बिल में 10% एक्स्ट्रा बिल लगकर आ रहा है। और अगर यही छोटी छोटी चीजों को अगर हम ध्यान दें, जैसे घर से निकल रहे हैं स्विच बोर्ड है जिसमें यूज नहीं हो रहे कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, उनको बंद कर दो। जैसे कि आपके बाथरूम का एग्जॉस्ट चल रहा है रात रात भर चल रहा है, उसको भी बंद रखो। वो लाइट जिसका कोई यूज नहीं है उसको बंद रखो। इससे होगा क्या, पहले तो बिल कम आएगा एंड आप कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट को ओवरऑल कम कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा, अगर हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छा देना है, तो उनको ये छोटी छोटी हैबिट्स देकर जानी है। अपने बच्चों को भी सिखाइए कि जब तुमने गेम खेल लिया है तो स्विच बोर्ड बंद करो, प्लग लगा हुआ है, स्टैंड बाय पावर मोड चल रहा है, ये काम बिल्कुल बंद कीजिए। ये आज छोटी आदतें जरूर लग रही हैं, लेकिन कल बड़ा बदलाव ला सकती हैं। 89.6 मिर्ची 1, समझदार वाली बातें करता हूं, मुझे पता है आप इंप्रेस हो गए। इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: मेरी पार्किंग में मेरा पड़ोसी गाड़ी पार्क कर देता है, क्या करूं?
1: व्हाट क्या करूं? इट्स सिंपल ब्रो, थैंक यू बोल उसको, थैंक यू। फ्री वैलेट सर्विस दे रहा है यार वो।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: ये होती है ना खुशखबरी। गुड मॉर्निंग मिर्ची मॉर्निंग्स पर आपके साथ है मस्त मौला गौरव और ये खबर साउथ कोरिया से आ रही है जो हम सबको सुकून दे सकती है। यस, साउथ कोरिया ने एक ऐसा डिवाइस बना लिया है जो कि सी वाटर को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर सकता है यूजिंग नथिंग, यानी कि उसके बदले में से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सनलाइट चाहिए। सोचिए, सूरज चाचू की रोशनी जो कि एकदम गर्मा गर्म है आजकल, उसकी वजह से अगर आपको सेफ ड्रिंकिंग क्लीन वाटर मिल जाए तो क्या चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, नो केमिकल इज रिक्वायर्ड, नो पावर ग्रिड, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ ये समुद्र का पानी आराम से सूरज चाचू की देखरेख में आपके लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बन जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर एक स्पेशल सरफेस कोटिंग होगी जो कि 97% सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और फिर 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेगी और फिर इवेपोरेट कर सी वाटर बहुत ही तेजी से एक कॉटन एंड दूसरे फिल्टर के थ्रू सीधे क्लीन वाटर बन जाएगा और ये स्ट्रॉ से बकायदा खींच कर निकाला जाएगा जो कि आने वाले कई सदियों की बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अगर ऐसा है और इन साइंटिस्ट ने मेहनत की है तो सबसे पहले इनको कुनाफा बकलावा खिलाया जाए और आने वाले दौर में दुनिया के हर जगह पर पानी होगा, ये हम कह सकते हैं। और भाई, मैं सारे साइंटिस्ट लोगों से कहूंगा जो आने वाले टाइम की हमारी मुसीबतें हैं उनको कम करने के लिए आप जैसा कर सकते हैं प्लीज करिए, क्योंकि हम लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है कि इसी जन्म में सारी प्रॉब्लम्स देखने की। 89.6 मिर्ची 1, थैंक यू टू ऑल द साइंटिस्ट। इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Pe Mirci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana,
2: rabana,
1: burga, burga, la virtua la burga,
2: Mirci, burga.
3: Hello? Hello?
4: Sir, very good evening, man. Bank support.
3: हाँ बोलिए
4: सर. I'm so sorry sir, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात है
4: सर, I'm so sorry, पूरा बताइए
3: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
4: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
3: पागल पागल है,
4: अब तो देने पड़ेंगे सर.
3: हेलो.
4: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
3: कौन बोल रहा है? विपिन?
4: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
3: अब
4: तो फंस गए सर.
3: हेलो
4: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर. आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
3: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
4: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
3: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
4: जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है. क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
6: तो इंतजार खत्म. RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ.
5: अभी कॉल करें 3100813.
7: यार बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
6: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो.
7: क्यों, वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
6: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक.
7: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा.
6: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट, साड़ीज, चूड़ीदार्स, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक.
7: मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस?
6: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो.
5: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग. लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका. स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली. लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड.

0: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: होती है भाई, फीलिंग्स तो बच्चों में होती है, बस उनको उनकी चीजें दिखाओ। हमें लगता है बच्चे आजकल मोबाइल की दुनिया में इतना खो गए हैं कि उनके अंदर वो इमोशनल फीलिंग नहीं है जो हमें हमारे टाइम पे दिखती थी। तो हमारी गलती है, हम उनको मोबाइल की दुनिया दिखा रहे हैं, उनको रियल वाली दुनिया क्यों नहीं दिखा रहे हैं, उनको उन खिलौने से क्यों नहीं खेलने दे रहे हैं जो हमारे बचपन में होते थे। एंड ऐसे ही एक पूरा अभी भी मामला हमारे कतर में चल रहा है, कतर टॉय फेस्टिवल की बात कर रहा हूं, जो बचपन को जिंदा करने का सबसे अच्छा तरीका है। बच्चों को लेकर जाइए उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर से लेकर उनके फेवरेट टॉय से उन्हें मिलवाइए, जो कि DECC में कंटिन्यू कर रहा है 31 जुलाई तक। एंड मुझे लगता है बच्चे अगर घर नहीं गए तो ये परफेक्ट जगह है उनके साथ वीकेंड बिताने की। गो एंड सेलिब्रेट, आज तो वैसे भी बड़ा ही स्पेशल दिन है, यस पर्पल सैटरडे, वहां भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। जाकर बच्चों को अच्छा फील कराइए, मस्त मॉल गौरव के साथ सुनते जाइए मिर्ची, ऐसी अच्छी बातें पता लगेंगी। इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: अज्ञानी तुमने मैंगो खूब खाया, अब खजूर खाने की बारी। सूख वाकिफ की गलियों में जहां खुशबू पहले आम की आ रही थी, इंडिया और पाकिस्तान के आमों की खुशबू, अब वहां आपको खजूर की खुशबू आएगी। यस, क्योंकि कतर के लोकल फार्म में लोकली ग्रोन डेट्स जो हैं, वो अलग अलग खजूरों की वैरायटी अब हमें ईस्टर्न स्क्वायर सूख वाकिफ में मिलने वाली है और इसकी शुरुआत होने जा रही है। एंड 25 जुलाई से 10 अगस्त तक अब ईस्टर्न स्क्वायर सूख वाकिफ में मिलेगा आपको कतर के अलग अलग फार्म से आई खजूरों की अलग अलग वैरायटी। एंड आप इन लोकली ग्रोन डेट्स को बेस्ट प्राइसेस पे ले सकते हो। संडे टू थर्सडे यानी कि वीकडेज में टाइमिंग रहेगी 4 PM to 9 PM एंड ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे ये रात 10 बजे तक रहेगा। अलग अलग वैरायटी, उसके डेट्स के और भी ढेर सारे प्रोडक्ट, ये सब कुछ आपको मिलेंगे, बिल्कुल फ्री है, कहीं नहीं जाना है, बस गाड़ी कहीं अच्छी जगह पार्क करनी है और चले आना। इवन सूख वाकिफ की मेट्रो भी आपके लिए बड़ा ईजी एक्सेस है। इसी उम्मीद में कि आप इस खजूर फेस्टिवल में जाकर इस डेट में अपना मुंह मीठा करा के लौटेंगे, भले ही जिंदगी में किसी भी डेट पर अगर आप गए और मुंह खट्टा हुआ तो यहां मीठा ही होगा। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हाँ जी, आजकल सुबह सुबह आकर कनेक्शन बनाता हूँ आपके साथ। लेकिन बातों ही बातों में टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं लगता है। फिलहाल कुछ अच्छी चीजें जो आपका इंतजार कर रही हैं, अगर शाम को थोड़ा फ्री हैं तो मैं कहूंगा जरूर जाइए सुख वाकिफ, जहां पर ईस्टर्न स्क्वायर में अब कतर का डेट फेस्टिवल शुरू हो चुका है। इसके अलावा आज इंक्लूसिविटी का डे है, वो दिन जिसे हम पर्पल सैटरडे के नाम से जानते हैं। सेकेंड एडिशन है जहां पर स्पेशली एबल पीपल, मैं उन्हें कहूंगा यस, उनके लिए आज बकायदा हमारे कतर में ये सैटरडे मनाया जा रहा है। जरूर जाएं, उनको भी अच्छा फील कराएं, स्पेशल फील कराएं। उनके लिए ही सारे ऑफर्स हैं, उनके लिए सारे डिस्काउंट हैं, जिसको आपको यूज करना चाहिए और उनको दुनिया को दिखाना चाहिए कि हमारा कतर हर चीज कितनी खूबसूरत तरीके से करता है। सो पर्पल सैटरडे का फायदा उठाइए, जरूर जाइए शॉपिंग मॉल्स में जो स्पेशली एबल पीपल हैं उनके लिए। मैं आपको बताऊं बहुत सारे ऑफर्स हैं, उनको स्पेशल फील कराना चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिए कि दुनिया में उनके लिए सब कुछ नॉर्मल तरीके से ही हो रहा है। 89.6 मिर्ची 1 पर मी सिंह टटवा बाय, लौटेंगे कल सुबह एक बार फिर से यही मिर्ची मॉर्निंग्स में। तब तक के लिए आप सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद।

0: यार आजकल ना जब सुबह सुबह आता हूँ तो गुड मॉर्निंग बोलने के लगा लगता है गुड आफ्टरनून ही बोल दूँ क्या? अरे गर्मी का पारा तो देखिए, सूरज चाचू की ब्राइटनेस ऐसी बढ़ी कि कम होने का नाम नहीं ले रही।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: अब देखिए दिन का मैक्सिमम तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, दिन का मिनिमम अराउंड 32 आएगा। एंड इन सब के बीच गर्मी का ये जो पारा है ये तब और बढ़ जाता है जब लू के थपेड़े इसके साथ रहते हैं। हालांकि आज हवा उतनी तेज नहीं है, 5-15 किलोमीटर पूरे दिन में चलेगी, पर बड़ी बात यह है जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो हमारे छक्के छूट जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं भाई साहब। और ये ह्यूमिडिटी से बचने का एक ही तरीका है, भर भर के पानी पियो, बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाओ। और इस उम्मीद के साथ कि एक एक दिन कर हम अब अगस्त की तरफ बढ़ रहे हैं और अगस्त से सितंबर में और बेहतर होगा, सितंबर से अक्टूबर में, दिसंबर आते तक सब ठीक हो जाएगा। एक एक महीना निकालते जाओ। आगे आपके साथ बढ़ता है गुडी गुड मॉर्निंग, मिर्ची मॉर्निंग सुन रहे हैं आप। इट्स हॉट
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100-0813.

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
3: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ, ये गाना भी, बड़ा एम्बेरेसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे तो वो अब सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे में लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
2: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वॉज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
7: FM मिर्ची वन। It's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: मुझे लंबे नाखून पसंद है, पर मैं हमेशा उन्हें चबा लेती हूँ, क्या करूँ?
1: अरे चबा के खाना तो अच्छी बात है, कीप इट अप। और चाहिए तो ब्यूटी पार्लर चली जा, बहुत वैरायटी है उनके पास।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

क्या गुरूर करना अपनी अच्छाई पर, क्या गुरूर करना अपनी अच्छाई पर, किसी ना किसी की कहानी में हम भी गलत हैं। बट आप लोग एकदम सही जगह आए हैं। जी हाँ, सलाम नमस्ते, मैं हूँ मिर्चीशा और हम आ चुके हैं वीकेंड वाइब्स लेक आपको हफ्ते का पूरा हाल सुनाने की। कहाँ जा सकते हैं, क्या इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं, क्या एग्जीबिशन अटेंड कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगी ऑन माय शो। लेकिन हाँ, ये बातों में सच्चाई जरूर है कि किसी ना किसी की जिंदगी में हम लोग गलत है। बट इट्स ओके, हम लोगों को पता भी नहीं है कि हम किसकी जिंदगी में गलत हैं और किसकी जिंदगी में सही। अपनी लाइफ एंजॉय करिए, किसी का बुरा ना चाहे, बस यही दो चीजें जो होती है ना लाइफ में वो इम्पोर्टेंट रखती हैं। बाकी तो बस जिंदगी चल रही है और हम लोग चला रहे हैं। बाकी ऐसी ही मजेदार बातों के साथ मेरे साथ बने रहिए क्योंकि शो अभी बाकी है गाइस। तो बने रहिए मेरे साथ, बताती हूँ अभी थोड़ी ही देर में कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब कुछ ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 पे मिर्ची ईशा के साथ। इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vjetva la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Sumanji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसिल है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: तो मैं आपको, अरे मैडम,
2: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल होना चाहिए।
3: आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? नहीं तो मैं, अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
6: it's hot।
7: यार बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
8: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
7: क्यों, वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
8: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
7: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
8: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
7: मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस?
8: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
7: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग, लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
9: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
10: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
11: दोनों मिलेगा।
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
13: 89.6
14: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hello everyone, my name is Mr. Bean, and meet my friend, Mr. Beer.
1: इस कैरेक्टर को तो आप अच्छे से जानते होंगे, बचपन से लेके बड़े होते तक हम ये देखते ही आए हैं। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर बीन की। अगर आप भी मिस्टर बीन के फैन हैं मेरी तरह, तो आप जा सकते हैं DECC जहाँ हो रहा है टॉय फेस्टिवल, जहाँ मिस्टर बीन का मैस्कट भी देखने को मिलेगा और बहुत सारी एक्टिविटीज भी करने को मिलेंगी। भाई देर किस चीज की है, एंट्री भी सिर्फ 50 रियाल है। अगर आप जाना चाहते हैं ना, तो इस हफ्ते या अगले हफ्ते भी जा सकते हैं, क्योंकि 31 जुलाई तक है। तो टेंशन नॉट, आराम से जाइए, बच्चों को साथ लेके जाइए, क्योंकि उनको मजा आने वाला है। समर वेकेशन और मजेदार हो जाएगा अगर आप बच्चों को लेके जाएंगे टॉय फेस्टिवल। इट्स ऑलवेज बीन अ ग्रेट प्लेजर जब भी आप टॉय फेस्टिवल जाते हो, एंड मैं हमेशा चाहती हूँ बीइंग एन अडल्ट एज वेल, वहां पे आपको मिलेंगी बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग चीजें करने के लिए। तो भाई तैयार हो जाइए, जाइए एंजॉय करिए बच्चों के साथ, बच्चा बन जाइए, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
2: मिर्ची फ्रेश माल।
3: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए वे जुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक।

जंगल जंगल बात चली है पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल गिला है फूल गिला है। इस जंगल बुक के गाने को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। कितना ही फेमस था बचपन में ये, जैसे ही कहीं बजता था हम दौड़ के आ जाते थे कि बस अब शुरू हो गया जंगल बुक, बैठ जाओ और अब मैं अपने सोफे से या बेड से नहीं उठने वाला, ये देख के ही उठूंगा, यही होता था ना हमारे साथ। तो अगर आपको अब ऐसा एक जंगल वाला एक्सपीरियंस लेना है तो आपके कदर में होने जा रहा है इंटू द जंगल शो। जी हाँ, 23 जुलाई से 1 अगस्त तक होने जा रहा है। इट इज़ एन इमर्सिव फॉरेस्ट एक्सपीरियंस जहाँ पे आप देखेंगे इतने ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स में जो वो परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, लाइव परफॉर्मेंसेज हैं, उसके अलावा जंगल के जो कैरेक्टर्स हैं वो इतना खूबसूरत तरीके से आपको स्टेज शो करके दिखाएंगे। एंड इट्स अ थियोरेटिकल पपिट्री हो रही है, डायनेमिक डांसेस हैं, थ्रिलिंग आपको सर्कस इंस्पायर्ड एक्ट्स मिलेंगे, भाई और क्या चाहिए। सारी कलाकारियां आपको देखने को मिलेंगी वहां पे। भाई करना क्या है, जाना है, आप जा सकते हैं ओएसिस स्टेज मॉल ऑफ कतर में 23 जुलाई से ये 1 अगस्त तक है। 5:30 PM शुरू हो जाएगा, 7 PM भी टाइम है इसका और 8:30 PM भी इसका टाइम है। प्राइस इज फ्री, यस इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन गो एंड एंजॉय विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कितना ब्यूटीफुल है ना कि एक एक्ट ऐसा देखने आप स्टेज पे जा रहे हो विद अ लॉट ऑफ एफर्ट बाय देम, तो जरूर देखने जाना चाहिए यार, एटलीस्ट यू नो फॉर देम हु इज एन आर्टिस्ट, जो शो कर रहे हैं अपनी आर्टिस्ट्री इन अ ब्यूटीफुल वे, तो जरूर जाइएगा और एंजॉय करिएगा इस इवेंट को। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

तरह तड़पाता है ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना जिंदगी को हंस के जीना। तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख को अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? डेट आफ्टर डेट, डेट आफ्टर डेट। लेकिन यहाँ पे जो मैं तारीख की बात कर रही हूँ वो तारीख नहीं है, वो डेट्स है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डेट्स फेस्टिवल के बारे में। जी हाँ, अगर आप भी खजूर के फैन हैं, अगर आप भी डेट्स के फैन हैं, तो आपके लिए एक ऐसा लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशनल फेस्टिवल लेके आई हूँ जिसको डेट फेस्टिवल बोला जाता है। वो होने जा रहा है आपके कतर में, एंड कतर की मिनिस्ट्री ऑफ प्रिंसिपैलिटी लेकर आई है ये लोकल डेट फेस्टिवल जो 25 जुलाई से शुरू हो रहा है, 10 अगस्त तक है। ये सूक वाकिफ के ईस्टर्न स्क्वायर में। एंड इसके अलावा बात करें इस फेस्टिवल की, तो यहाँ पे जो मेन पर्पस है इस फेस्टिवल का, दैट इज कि कतर की जो रिच एग्रीकल्चर हेरिटेज है उसको सेलिब्रेट करना और हमारे लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करना। उसके अलावा यहाँ पे एक बेहतरीन चीज आपको मिलेगी, वो मिलेगी फ्रेश और फाइनेस्ट रुताब डेट्स की अलग अलग लोकल वैरायटीज। यहाँ सिर्फ शॉपिंग ही नहीं होगी, यहाँ पे आपको मिलेंगे फार्मर्स जो डायरेक्टली अपनी फार्म से लेके आते हैं इन डेट्स को। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनकी ट्रेडिशनल फार्मिंग के बारे में जान सकते हैं और बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। देखिए, ये फेस्टिवल ही नहीं है, ये एक बड़ा नॉलेजेबल आपका एक टूर हो जाएगा अगर आप जाएंगे। एंड इसके टाइमिंग्स भी बता दूँ, संडे से थर्सडे शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक है, एंड फ्राइडे और सैटरडे को ये शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक होगा। तो अगर आप वीकेंड में या किसी दिन जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, घूमते घूमते निकल जाइए और देखिए डेट्स का टेस्ट भी और एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। एंड ऐसी ही ना मीठी मीठी बातों के साथ फिर से मैं सिलसिला जारी रखूंगी बातों का और गानों का। तो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.8।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: जिनेलिया एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
3: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए।
4: अलार्म लगा है। ओ कॉल, हेलो जिनेलिया, सॉरी यार, टाइम हो गया, सॉरी।
3: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
2: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
6: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more, all at one place. Call 5572-7387 today.
7: Hello Sharps, our product is phenomenal, one of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain,
8: office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao, profit aayega.
7: Relative se advice lo to kehte hain,
9: kaam ko time do, 25 ghante kaam karo, dark circles honge to future bright hoga.
7: Isiliye main aapke paas aaya hu promotion fund ke liye, jiske liye aap 50% equity le sakte ho.
10: Bhai kya kar raha hai tu? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
11: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: यार एक बात मुझे समझाती नहीं है, कोई भी मूवी डाउनलोड करूँ प्रिंट हमेशा खराब निकलती है, क्या करूँ?
1: अबे तेरे को पता ही है कि हमेशा खराब निकलती है, तो तू प्रिंटर बदल देना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: कतर टॉय फेस्टिवल को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कतर टॉय फेस्टिवल एक्टिवेशंस भी लागू हो चुकी हैं हमारे दोहा कतर में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऐसी एक्टिवेशंस की जहाँ पे हर मॉल में आपको एक कैरेक्टर का सारा सेटअप मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट बारबीज, तो वो एक पर्टिकुलर मॉल में आपको बारबी का पूरा सेटअप मिलेगा। वहां जाके आपके बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अभी तक टॉय फेस्टिवल नहीं गए हैं तो जगह जगह मॉल्स में ये छोटे छोटे जो एक्टिवेशन लागू किए गए हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर कुछ मैं आपको बताऊं उसमें से, तो बात करें पिक्सार की, तो पिक्सार आपको मिलेगा प्लेस वैंडम में, बारबी मिलेगी सिटी सेंटर में और मुआना मिलेगी दोहा फेस्टिवल सिटी में। ऐसे ही बहुत से और मॉल्स हैं जहां पे आपको ये एक्टिवेशंस मिलेंगी। तो देखिए, ये एक फायदे का सौदा इसलिए भी है क्योंकि ये 30th सितंबर तक है। बच्चे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ देयर वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं हर मॉल में। किसी भी मॉल में जा रहे हैं वहां पे उनको टॉय फेस्टिवल से रिलेटेड हर चीज मिलेगी। बस करना ये है, जाना है मॉल, एंजॉय करना है, बस थोड़े से पैसे भी खर्चने हैं और यहीं पे भी जाइए, आपको ये सारे एक्टिवेशंस अभी से मिल जाएंगे। तो बस बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ, इंटरेस्टिंग इवेंट्स के साथ। सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वाने, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Escabana, puscabana, sacabana. Cabana. Murga, murga. La vieva la murga. Mirci, murga.
2: Hello?
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस,
2: कौन बोल रहा है
3: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
2: क्या मजाक चल रही है?
3: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
4: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कु।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष।
5: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
5: FM Mirchi 1. It's hot.

हाय गर्मी क्या आप भी बादशाह की आवाज में यही बोल रहे हैं हाय गर्मी। गर्मी के हालात तो ऐसे हैं कि आप उठते बैठते यही कहोगे हाय गर्मी, लेकिन आपको राहत देने के लिए और इस गर्मी में आप एकदम आराम से घूम सके इसका समाधान लेके मैं आ चुकी हूँ आपके साथ। हाँ जी, कतर में है ऐसी ही बहुत सी जगहें जहाँ पे आप इस धूप में भी घूम सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे इंस्टॉल्ड हुए हैं एयर कंडीशनर। यस, एयर कंडीशनिंग है वो प्रॉपर। आप एसी में आराम से घूम सकते हैं, वो भी आउटडोर। ठीक है, मैं आउटडोर की बात कर रही हूँ। जी हाँ, उसमें से कुछ है ओम अल सनीम पार्क, प्लेस वेंडो मॉल लुसेल, अल गराफा पार्क, टोर्नेटो टावर, ड्यून प्लाजा वेस्ट बे, ऑक्सीजन पार्क, 21 हाई स्ट्रीट, कतारा कल्चरल विलेज, अल हज मॉल, वेस्ट वॉक अलवाब, क्रिस्टल वॉक वे, गिवान आइलैंड। ओ माय गॉड, एक बात तो माननी पड़ेगी यार, अमीर कंट्री में रहने के ना ये बहुत बड़ा फायदा है कि आप आउटडोर भी एसी में घूम सकते हैं। फॉर मोर अपडेट

जंगल जंगल बात चली है पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल गिला है फूल गिला है। इस जंगल बुक के गाने को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। कितना ही फेमस था बचपन में ये, जैसे ही कहीं बजता था हम दौड़ के आ जाते थे कि बस अब शुरू हो गया जंगल बुक, बैठ जाओ और अब मैं अपने सोफे से या बेड से नहीं उठने वाला, ये देख के ही उठूंगा, यही होता था ना हमारे साथ। तो अगर आपको अब ऐसा एक जंगल वाला एक्सपीरियंस लेना है तो आपके कदर में होने जा रहा है इंटू द जंगल शो। जी हाँ, 23 जुलाई से 1 अगस्त तक होने जा रहा है। इट इज़ एन इमर्सिव फॉरेस्ट एक्सपीरियंस जहाँ पे आप देखेंगे इतने ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स में जो वो परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, लाइव परफॉर्मेंसेज हैं, उसके अलावा जंगल के जो कैरेक्टर्स हैं वो इतना खूबसूरत तरीके से आपको स्टेज शो करके दिखाएंगे। एंड इट्स अ थियोरेटिकल पपिट्री हो रही है, डायनेमिक डांसेस हैं, थ्रिलिंग आपको सर्कस इंस्पायर्ड एक्ट्स मिलेंगे, भाई और क्या चाहिए, सारी कलाकारियां आपको देखने को मिलेंगी वहां पे। भाई करना क्या है, जाना है, आप जा सकते हैं ओएसिस स्टेज मॉल ऑफ कतर में 23 जुलाई से ये 1 अगस्त तक है। 5:30 PM शुरू हो जाएगा, 7 PM भी टाइम है इसका और 8:30 PM भी इसका टाइम है। प्राइस इज फ्री, यस इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन गो एंड एंजॉय विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कितना ब्यूटीफुल है ना कि एक एक्ट ऐसा देखने आप स्टेज पे जा रहे हो विद अ लॉट ऑफ एफर्ट बाय देम, तो जरूर देखने जाना चाहिए यार, एटलीस्ट यू नो फॉर देम हु इज एन आर्टिस्ट जो शो कर रहे हैं अपनी आर्टिस्ट्री इन अ ब्यूटीफुल वे, तो जरूर जाइएगा और एंजॉय करिएगा इस इवेंट को। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

Mix. Mirchi. समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है, बाकी सब बातें बाद में, लेकिन ये लाइन जो है ना, ये बहुत ज्यादा दिल को लगती है। समय सच्ची में बहुत बलवान होता है। इसीलिए शक्तिशाली होता है क्योंकि समय हमें सिखाता है किस तरीके से हर एक सिचुएशन से हमें उभरना है, हर एक सिचुएशन में किस तरीके से हमको अपने आप को हील करना है। ये सब समय रहते ही हमें समझ में आता है। बाकी समय हो चुका है हमारा भी जाने का, बहुत समय समय कर लिया। आप लोगों को बताऊंगी वो सारे इवेंट्स एग्जीबिशंस अगले हफ्ते की, और इस हफ्ते सारे वीकेंड्स में जो भी प्लानिंग मैंने आपको दी है, जाके एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। होप आपका वीकेंड बहुत अच्छा गया हो, और अगले वीकेंड आपको मिलूंगी सेम प्लेस सेम टाइम पे। तो तब तक के लिए लेती हूँ आपसे अलविदा, टाटा बाय बाय, टेक केयर। अब मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते, सो स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन 89.6 मिर्ची 1 एट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ दो फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
2: हाँ, लगता ही है। ही इज द काइंड ऑफ डायरेक्टर, एज एन एक्टर यू हैव टू रियली ट्रस्ट हिम, क्योंकि ही इज हिज आइडियाज कम फ्रॉम where you never understand. And if you start justifying it, जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, जैसे कि you know, तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी, तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी. But you have to trust him.
1: ये थी प्रियंका चोपड़ा talking about विशाल भारद्वाज on मिर्ची. It's hot. Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
3: Our business is our business. None of your business.
4: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment.
5: Qatar का number one radio station. 89.6
6: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Mirchi Helpline?
1: या मिर्ची हेल्पलाइन बताओ क्या प्रॉब्लम है.
0: सबको 6 फुट हाइट वाले लड़के चाहिए. व्हाट अबाउट मी?
1: अरे भाई तुझे क्या चाहिए मुझे कैसे पता चलेगा? तो खुद डिसाइड कर.
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.

0: फिल्में ना आपके लिए दाल चावल वाला कंफर्ट लेके आती है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप। एंड यस, अगर आप नो एंट्री के फैन रहे हैं तो आपको पता होगा कि दाल चावल के अलावा लोग जो हैं वो बिरयानी की तलाश में भी बाहर निकलते हैं। लेकिन फिलहाल तो मैं बिरयानी की बात कर ही नहीं रही, मैं तो दाल चावल अपने कंफर्ट फूड की बात कर रही हूँ यार, जिससे मैं पर्सनली कभी बोर नहीं हो सकती। क्योंकि मतलब दिस इज समथिंग दैट यू कांट सर्वाइव विदाउट। आप डेली बिरयानी खाकर तो मजा नहीं कर सकते ना, पेट तो कभी तो खराब हो ही जाएगा आपका। ठीक वैसे ही कुछ फिल्में होती हैं जो आपके लिए दाल चावल वाला कंफर्ट दे जाती हैं। आप उन फिल्मों से कभी बोर नहीं हो सकते। इनफैक्ट आप किसी भी मूड में हो, किसी भी जोन में हो, बस वो फिल्म लगाएंगे और एक बोलते ना कि यू गो बैक टू योर होम, मतलब वैसी वाली फीलिंग आ जाती है। तो आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भाई आपके लिए वो कंफर्ट फिल्म कौन सी है जिसको आप कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल, टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Burka, burka. La
1: vieja la burka. Mirchi, burka. हेलो
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ ऑयल से। ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
1: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
1: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात अपने तक ही रखना।
1: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
1: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
1: कच्चा? अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
1: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
2: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
1: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
1: कुकर? हाँ कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
1: अच्छा।
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
1: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
1: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
1: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
1: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है?
1: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
1: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
1: अबे कौन बोल रहा तू?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
1: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: भाई कुछ फिल्में ना मम्मी के प्यार के जैसे होती हैं, एवरग्रीन फॉर यू।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची में ट्यून्ड इन हो आप, और जैसे आपकी मम्मी का प्यार आपके लिए अलग है, वैसे ही हर इंसान की मम्मी का प्यार उसके लिए अलग है। एंड ये रेफरेंस मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एंटरटेनमेंट भी कुछ इसी तरीके से चलती है यार। क्योंकि अगर आपको कोई फिल्म पसंद है तो दूसरे को वो फिल्म पसंद हो जरूरी नहीं, बट उसकी पसंद कुछ और भी हो सकती है। ये तो बड़ी ही बेसिक सी बात कर दी श्रुति, लेकिन कभी कभी हम ये बेसिक्स भूल के सामने वाले को जज करने लगते हैं। इसलिए आज मैंने सोचा है कि भैया आपके पसंद की बात करेंगे। आई वेंट डाउन टू माई ऑफिस पीप्स और मैंने उनसे पूछा कि भाई वो कौन सी फिल्म है उनके लिए जिससे वो कभी बोर नहीं हो सकते, हर बार उसी लेवल पे इंटरेस्ट के साथ देखते हैं वो। सो अर्जित इज विद मी।
3: गोविंदा की कोई भी फिल्म आप उठा लो तब आपको बहुत अच्छी लगती थी, अब शायद आपको एम्बैरेसिंग स्लैश क्रिंज लगे। प्लस डायलॉग्स डॉली डॉली डॉली डॉली डॉली और टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग, पता नहीं वो आदमी क्या करता था, एक पूरी फिल्म ऐसे बात की उसने। सो गोविंदा और गोविंदा की सारी फिल्में।
0: क्या बात है, आई आई कैप्टन, मुझे भी गोविंदा की कोई भी फिल्म किसी भी वक्त दिखा दो, आई विल बी मोर देन हैप्पी। इनफैक्ट अगर कोई लड़का मुझे इम्प्रेस करना चाहता है तो हम गोविंदा की फिल्मों पे मूवी मैराथन कर सकते हैं, ठीक है? ओके। वैसे अभी और भी कुछ दोस्तों से बातचीत की है अबाउट द सेम, बट वो कॉन्वर्सेशन लेकर आऊंगी कुछ ही देर में। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, मैं हूँ आपके साथ श्रुति।
4: मिड-डे मोहब्बत
1: प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: देखो प्यार में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन प्यार से कभी आपका मन नहीं भर सकता।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और ठीक वैसे ही हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई एक फिल्म ऐसी होती है जिससे उसका मन कभी भी नहीं भर सकता। और आज आपकी कुछ ऐसी फेवरेट वाली फिल्मों की बात कर रही हूँ। सो आई वेंट डाउन टू माई ऑफिस पीप्स, नाउ कृष्ण इज विद मी। बताओ दोस्त, तुम्हारे लिए तुम्हारी वो कौन सी फेवरेट वाली फिल्म है जो तुम कभी भी देख सकते हो?
2: ये दो फिल्म है जो मैं कभी भी देख सकता हूँ। पहली फिल्म है पार्टनर, क्योंकि उसमें गोविंदा और वो सलमान की वो जो केमिस्ट्री पूरी रहती है ना, बड़ी मजेदार सी थी। और वो इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, वो हमेशा खुशी मुझे उस मूवी को देख के होती है। और दूसरी फिल्म है रब ने बना दी जोड़ी, तानी पार्टनर,
0: क्या बात।
2: जो वो पूरा केमिस्ट्री रहता है, आह हा, मजा ही आ जाता है। और वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे उस पूरी मूवी का लगता है, सूरी पापे का जो दोस्त होता है बॉबी, मुबारक बधाइयां पचा के सूरी पापे को जो ट्रांसफॉर्म करता है, वो प्रोसेस बड़ा मजेदार रहता है। तो ये दो फिल्म मैं कभी देख सकता हूँ, मजा आता है, दिल खुश हो जाता है।
0: तो आप समझ सकते हैं लोग अपनी उस फेवरेट फिल्म की बात करते करते ही कितने अच्छे वाले जोन में चले जा रहे हैं। तो फटाक द चिटाक आप भी मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पर कनेक्ट कीजिए और अपनी फेवरेट फिल्म के बारे में मुझे जरा बताइए। टिल देन एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: ये दुनिया ये महफिल, और इस महफिल में पाए जाने वाले दो प्रजाति के लोग बाबू मोशाय।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो जी, हाय। सो ये वाली जो दो प्रजातियां हैं वो डिसाइड की जा रही है गुस्सा करने वाले लोगों के मद्देनजर। जिसमें पहली प्रजाति का जो इंसान है, इसको गुस्सा आता है तो वो शांत भी होता है। मतलब ये अपने आप को थोड़ा सेक्लूड करेगा फ्रॉम दैट सिचुएशन, और अपने आप को धीरे धीरे करके, मतलब जो भी इसका प्रोसेस है ऑफ कूलिंग डाउन, ये उस प्रोसेस में लग जाएगा। लेकिन जो दूसरी प्रजाति के महानुभाव है ना, कभी कभी इनका दिमाग इस लेवल पे फिर जाता है कि ये गुस्सा करके खुद शांत तो हो जाते हैं ऊपर ऊपर से, बट अंदर से इनके अंदर वो गुस्सा इस लेवल का भरा होता है ना कि ये सोच लेते हैं कि आज तो कोई भिड़े, बस कोई भिड़े मेरे से, जो मेरे साथ लगेगा उसकी तो ऐसी की तैसी। वैसे मैं इनके बारे में इतने अच्छे से इसलिए जानती हूँ क्योंकि कभी कभी आई स्विच टू द सेकेंड कैटेगरी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
3: Midday Mohabbat
1: presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
2: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगेन एज रेडियो जॉकी। करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
3: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था। बहुत मजा आता था, मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
1: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
6: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Mirchi Helpline?
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: यार ये धूप इतनी है कि साइलेंसर से ज्यादा तो सीट गर्म हो जाती है, क्या करूं?
1: अरे गोचू, तो एक काम करना, साइलेंसर पे बैठ के चला जा, सिंपल।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 89.6 मिर्ची, मिर्ची फ्रेश माल।
0: लव, लॉस और होप का म्यूजिकल सफर, वे जुनून।

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए वे जुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। पेट्रियोटिज्म के बाद अब हॉरर जॉनरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं अहान शेट्टी, बोले तो सुनील शेट्टी के सुपुत्र यार, क्योंकि उन्होंने बॉर्डर 2 के बाद अब विक्रम भट्ट की अपकमिंग फिल्म 1920 कोल्ड विंटर के स्टार कास्ट को ज्वाइन किया है। शूटिंग नवंबर से शुरू होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। बाकी ये 6th इंस्टॉलमेंट होगा इन द 1920 फ्रेंचाइज, जिसके फीमेल लीड की तलाश अभी भी जारी है। बट यस, अहान शेट्टी के बारे में इस चीज को लेकर कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आई है। राघव जुयाल की अपकमिंग फिल्म भाई तेरा स्टार है का नया गाना सुना, नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, बिकॉज इट इज येट अनदर रिक्रिएशन। हां जी, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, ये गाना जो था उसका 2.0 वर्जन आया है, जिसमें राघव और निहारिका एनएम साथ नजर आ रहे हैं। देव नेगी और पलक मुछाल ने इसमें आवाज दी है। बाकी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन की बात करें तो भाई जतिन ललित का म्यूजिक था, जिसके रिक्रिएटेड वर्जन में लिरिक्स दिए हैं समीर अंजान एंड मोहसिन शेख ने। बाकी विवेक बी अग्रवाल डायरेक्टोरियल, ये फिल्म 30th of June को थिएटर्स में आएगी। So you better mark your calendars for this one. बटवारा 1947 से नया गाना आया है, नाम है इसका कहां चले गए हो राम। शबाना आजमी इस गाने को लीड करते नजर आ रही हैं, एंड इट इज एन इमोशनल ट्रैक जिसको ए आर रहमान ने कंपोज किया है। जावेद अख्तर साहब के बोल हैं, अनुराधा पौडवाल और शान की आवाज है। बाकी राजकुमार संतोषी डायरेक्टोरियल इस फिल्म में, सनी देओल के साथ साथ प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यू सिंह नजर आएंगे। एंड द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 14th of August, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन एज वेल। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
2: I'm gonna be a fan of

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La fiesta la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st floor। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसिल है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है। आप मेरे को क्यों बता रहे हो, ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता तो दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल थोड़ी
3: जी। आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया, रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है। अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: ब्रेड पकौड़े की कसम रणबीर कपूर को रणवीर सिंह की तरफ से मैं थैंक्स बोल देती हूँ यार। अगर ब्रेड पकौड़े की कसम से आप ये नहीं समझ पाए कि मैं फिल्म बैंड बाजा बारात की बात करने वाली हूँ बाबू मोशराय, तो क्या खाक फिल्मी है आप? जरा इंटेक अपना बढ़ाइए मेरे शो का, देखिएगा फिर दिन दोगुनी रात चौगुनी किस तरीके से फिल्मी आपा आपके अंदर घुसता है। बट यस, टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म जो रिलीज हुई थी साल 2010 में, जिसको डायरेक्ट किया था मनीष शर्मा ने और जिस फिल्म के साथ रणवीर सिंह ने अपना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री डेब्यू किया था, उसके लिए मैं रणबीर कपूर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये फिल्म सबसे पहले रणबीर कपूर को ऑफर की गई थी, बट ही डिडंट वांट टू प्ले बिट्टू। लेकिन बाद में जब ये फिल्म इतना अच्छा परफॉर्म कर गई ना, तो रणबीर कपूर को रिग्रेट हो रहा था अपने उस डिसीजन पे। बट कोई नहीं, उनकी वजह से रणवीर सिंह को इतना अल्टीमेट लेवल का डेब्यू का मौका मिल पाया यार। बाकी अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो लेट मी टेल यू, फिल्म में रेडियो मिर्ची का जिक्र भी है, और सिर्फ जिक्र नहीं, बेसिकली जब बिट्टू और श्रुति के बीच में वो कांड हो जाता है ना, और बिट्टू श्रुति को लास्ट टाइम उसके घर ड्रॉप कर रहा होता है, तो ही इज लिसनिंग टू रेडियो मिर्ची, एंड स्पेसिफिकली हमारे आरजे नवेद बोल रहे होते हैं उनके कानों में। पता था आपको? चलो कोई नहीं, मैंने बता दिया ना। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: मिडडे मोहब्बत प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन
2: पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन।

0: मेरे हिसाब से तो ये बॉडी पॉजिटिविटी नहीं है।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हूँ आप, एंड आई एम श्योर आपको धमाल 4 के बारे में तो पता होगा। कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी ये फिल्म, एंड उसमें एक किरदार है अंजलि आनंद ने जिस किरदार को प्ले किया है। जैसा कि हम जानते हैं, या अगर नहीं पता हो तो बता दूं, अंजलि आनंद जो है वो हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बॉडी पॉजिटिविटी को लेकर एक फ्लैग बेरर मानी जाती है। बट धमाल 4 में जो किरदार उन्होंने निभाया है उसकी वजह से उनको काफी सारे बैकलैश भी मिले हैं, जिसपे शी एड्रेस्ड बॉडी शेमिंग डिबेट्स, एंड उन्होंने कहा कि उनकी डेफिनेशन उनका अपीयरेंस नहीं है और वो अपने काम को इस चीज से कभी भी ओवरशैडो नहीं होने देती। बट अंजलि, मैं जिस पर्सपेक्टिव से आपकी इस फिल्म को देख के आई हूँ, मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग प्लस साइज में आते हैं, एंड दे वर लेजिट ऑफेंडेड बाय द रिमार्क्स जो इस फिल्म में आपके ऊपर किए गए थे। वो सीन में आपके एंट्री पे हाथी की आवाज हो या अदर बॉडी शेमिंग जोक्स जो आपके ऊपर मारे गए हैं इन द मूवी। सो आई एम सॉरी, दिस फॉर मी इज नॉट बॉडी पॉजिटिविटी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और आप इस चीज पे क्या राय रखते हैं वो मुझे जरूर बताइएगा मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिडडे मोहब्बत प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
1: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
2: कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: यार देखो, हिट होना अलग बात है और हिस्ट्री क्रिएट करना अलग।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची बेटी उन दिन हुआ बाबू मोशाय, और अगर नेशनल अवार्ड्स का नाम आता है तो ये सुनते ही बात समझ में आ जाती है कि यार यहाँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं, परफॉर्मेंस का कलेक्शन काउंट होता है। और इस साल के 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सबसे बड़ी जीत रही आर्टिकल 370 की, जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। एंड इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने अपना पहला नेशनल अवार्ड भी जीता है एज द बेस्ट एक्ट्रेस। नॉट जस्ट दैट, इस फिल्म के लिए ही म्यूजिक प्रोड्यूसर शाश्वत सचदेव को भी बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का अवार्ड दिया गया है। मूविंग ऑन, बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी इस बार शेयर हुई है। सबसे पहले तो मलयालम सिनेमा के पावर हाउस ममूती को ब्रह्मा युगम के लिए यह अवार्ड दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए नेशनल अवार्ड मिला। और अगर डायरेक्शन डिपार्टमेंट में बाजी मारने की बात करें तो राजकुमार पेरियासमी को फिल्म अमरान के लिए ये अवार्ड दिया गया। वहीं कमर्शियल सिनेमा भी पीछे नहीं रहा, पुष्पा 2 को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड मिला है। एंड दिस अवार्ड इज अ प्रूफ कि भले ही आपकी फिल्में आपका काम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करे ना करे, अगर उनको इस अवार्ड कैटेगरी में डाला गया तो आपने कोई ना कोई तीर तो जरूर मारी है। और जब टैलेंट को मिलता है नेशनल अवार्ड तो अपलॉज सिर्फ थिएटर्स में नहीं पूरे इंडिया में गूंजता है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, एंड हियर्स माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
3: मिड डे मोहब्बत
4: प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: चेयरमैन
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन बता बेटा सवाल क्या है।
0: यार एक बात मुझे समझाती नहीं है, कोई भी मूवी डाउनलोड करूं प्रिंट हमेशा खराब निकलती है, क्या करूं?
1: अबे तेरे को पता ही है कि हमेशा खराब निकलती है, तो तू प्रिंटर बदल देना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: ज्यादातर फिल्में फ्राइडे को फेल नहीं होती, मंडे को होती हैं। फ्राइडे तो मार्केटिंग का दिन होता है, देन कम सैटरडे जो होता है क्यूरियोसिटी का दिन, लेकिन मंडे सच बोलता है। तब पता चलता है ऑडियंस से टिकट्स खरीदने आई थी या दिल देकर गई थी। और आज के जमाने में जहाँ हर फ्राइडे कोई ना कोई फिल्म, कोई ना कोई गाना और कोई ना कोई नेक्स्ट बिग थिंग लॉन्च होता है, वहाँ मंडे से बड़ा क्रिटिक कोई नहीं होता। इसलिए अब सिर्फ ओपनिंग कलेक्शन से कहानियां नहीं लिखी जाती, वर्ड ऑफ माउथ लिखता है, रिपीट ऑडियंस लिखती है, और कभी कभी एक गाना या एक फिल्म अपनी असली जानी शुरू ही तब करती है जब उसका प्रमोशन खत्म हो जाता है। इस हफ्ते का मिर्ची टॉप 20 भी ऐसी ही कुछ कहानियों से भरा हुआ है। हाय, माय नेम इज सुरेंद्र सुंदरम एंड लेट्स गेट दिस शो ऑन द रोड। और नंबर 20 इस हफ्ते भूत बंगला का ये गाना तू ही दिस्ता।
4: नंबर 20 तू

Oh, by the way, Arijit Singh का एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी एक ऐसा गाना जिसकी कहानी ने साबित किया कि जब ऑडियंस किसी फिल्म को अपना लेती है ना, तो उसे कोई मार्केटिंग कैंपेन हरा नहीं सकता। नंबर 19 पर दिस इज मस्कारा बाय AR रहमान एंड इशाक कामिल। फिल्म का नाम तो आप जानते हैं, मैं वापस आऊंगा। नंबर 19।

वैसे धुरंधर अगले साल नेशनल अवार्ड्स में कितनी बड़ी प्रेजेंस होने वाली है उसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। लेकिन इस हफ्ते नेशनल अवार्ड्स ने एक और फिल्म को गले लगा लिया, आर्टिकल 370, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस, यामी गौतम। और पता है मुझे इस जीत में सबसे खूबसूरत बात क्या लगी? बॉलीवुड यामी गौतम को हीरोइन बनाना चाहता था, यामी गौतम ने एक्टर बनना पसंद किया। जब सब ग्लैमरस फिल्म्स के पीछे भाग रहे थे, यामी ने कहानियां चुनी, अ थर्सडे, लॉस्ट, चोर निकल के भागा, द ब्रिलियंट हक एंड आर्टिकल 370, एक के बाद एक स्टेलर परफॉर्मेंस। एंड नन ऑफ द फिल्म्स हैड अ जौहर, अ चोपड़ा, अ भंसाली और इम्तियाज अली अटैच्ड टू इट। पर आज नेशनल अवार्ड ने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं दी, एक करियर को सर्टिफाई कर दिया। स्क्रीन पर सरनेम नहीं दिखता, सिर्फ परफॉर्मेंस दिखती है। नाउ यामी का करियर आसान रास्तों से नहीं गुजरा, शी हैड टू डू व्हाट एवरीवन डज। लेकिन उनकी पहली फिल्म थी विद अ मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट, सुजीत सरकार। फिल्म का नाम मिकी डोनर। लोग इस फिल्म को आयुष्मान खुराना के लिए जानते हैं, बट इस फिल्म की असली स्थिरता यामी थी। इस फिल्म का वो गाना इसने हमें पहली बार बताया था कि एक नई एक्ट्रेस आ चुकी है। माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम विकी डोनर, दिस इज पानी दा रन।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: हेलो हेलो
3: सर वेरी गुड इवनिंग मैं बैंक से बोल रहा हूँ
2: हाँ बोलिए
3: सर आई एम सो सॉरी सर बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का
2: बनवाया था भैया क्या हो गया नहीं क्या बात है
3: सर आई एम सो सॉरी पूरा बता
2: क्या करो भैया कहाँ
3: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को कहीं पे यूज किया आपने कुछ परचेजिंग करी उससे
2: बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो क्या कर रहे हो
3: आई एम सो सॉरी सर ऐसी कभी कभी हो जाता है सर उससे कुछ परचेज किया आपने
2: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया हेलो
3: आई एम सो सॉरी सर सर मैं आपसे कहना चाह रहा था सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था सर बस फाइनली ये बता दीजिए कुछ परचेज किया आपने उससे कुछ खरीदा था
2: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा भैया पागल है क्या
3: आई एम सो सॉरी सर आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे
2: पागल पागल है
3: अब तो देने पड़ेंगे सर
2: हेलो
3: अब तो देने अब तो फंस गए देने पड़ेंगे अब तो फंस गए देने पड़ेंगे
2: कौन बोल रहा है विपिन
3: नहीं सर तो बैंक में आना पड़ेगा बैंक का खाना खाना पड़ेगा बैंक के पैसे देने पड़ेंगे
2: अब
3: तो फंस गए सर
2: हेलो
3: सर आप फोन मत काटिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैंने एक मजाक किया छोटा सा मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था आपका मुर्गा बन गया है
2: उसके पैसे को क्या हुआ भाई देने पड़ेंगे
3: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे आप अब भी नहीं समझे मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ
2: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं
3: जी अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: Ja Simran, ja jeere apni zindagi. Ja beta, ja.
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने हिट गाने
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन इट्स हॉट
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 17.

एक वक्त था जब ये गाना टॉप 10 में था, लेकिन जैसे जैसे फिल्म थिएटर से उतर रही है वैसे वैसे ये गाना भी काउंटडाउन में धीरे धीरे नीचे आ रहा है। लेकिन नंबर 16 पर एक नई एंट्री है एंड द सॉन्ग इज कॉल्ड Massacre from Alpha, and this basically is a dance song with your typical YRF glamour. लेकिन इस गाने को सुनते ही मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई। कभी-कभी लगता है हम हिंदी गाने सुन ही नहीं रहे, हम इंग्लिश पॉप सुन रहे हैं। बस लिरिक्स हिंदी में हैं। जरा ये वाला

0: And then you got Abhishek Bachchan doing the rapping R&B. Notice kiya? Ye gaane Hindi mein zarur hain. लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका एटीट्यूड, इनकी फ्रेजिंग, सब कुछ ग्लोबल पॉप या R&B है। और वैसे देखा जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी म्यूजिक इवॉल्व होना चाहिए, बस कभी कभी दिल वो गाने ढूंढता है जो सिर्फ हिंदी में लिखे नहीं गए, हिंदी में महसूस भी किए गए।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: दोस्ती का गुस्सा है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
4: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।
6: Only on Mirchi. It's hot.
7: Number 50.
8: Say what?

कब आखिरी बार ऐसा हुआ था कि आप किसी गाने का इंतजार कर रहे थे? फिल्म का नहीं, ट्रेलर का नहीं, सिर्फ एक गाने का। आजकल तो हर हफ्ते 10, 20, 30 नए गाने आ जाते हैं और हम सुनते हैं, इंस्टाग्राम रील्स में उन्हें यूज करते हैं, और अगले हफ्ते एक नया गाना आ जाता है एंड वी रिपीट द साइकिल। लेकिन कुछ दिन पहले इंटरनेट पे एक छोटा सा टीजर आया था उस गाने का, जिसका लोग पागलों की तरह इंतजार कर रहे थे।

0: एंड फिर क्या था, बस सोशल मीडिया को जैसे करंट लग गया हो। रीजन सिर्फ गाना नहीं था, रीजन थे अरिजीत सिंह। जब अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट अनाउंस की थी, सच कहूं ऐसा लगा था जैसे एक दौर खत्म होने वाला है, हमारे जख्मों को अब मरहम कौन लगाएगा। फिर अमाल मलिक ने एक इंटरव्यू में ये बात कही,
1: 63 फिल्म से अमाल मलिक यानी मैं निकाला गया हूँ, पर एक आवारापन टू मिली, उस पे मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। वो सारे फिल्मों का एक सूट समेत ऊपर वाले ने दे दिया, अब मेरा काम है उसमें बेस्ट करना। इतनी बड़ी लेगेसी है, सर पे एक तलवार है, तो फिर आओ तेरा मेरा रिश्ता, मुस्तफा जाहिद, मोहित सूरी, इमरान हाशमी, सबने ग्रेट, प्रीतम दा का म्यूजिक, आई हैव टू डू माय बेस्ट। अभी अरिजीत सिंह वो गाना गाए तो उनकी मर्जी, नहीं गाए तो भी उनकी मर्जी, पर हिंदुस्तान के नंबर वन सिंगर मेरे भाई अरिजीत सिंह अगर गाएंगे तो मजा आ जाएगा।
0: शायद आपकी दुआएं कबूल हुई। मुझे नहीं पता कि अरिजीत ने अपना रिटायरमेंट जो है वो कैंसिल कर दिया है, रिटायरमेंट से वो वापस आ गया है, या ये सिर्फ एक गाना है, एक एक्सेप्शन है। ऑनेस्टली मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जो बात मुझे इमोशनल कर गई वो ये थी कि स्ट्रीमिंग के जमाने में जहां हर चीज इंस्टेंटली मिल जाती है, एक गाने ने लोगों को फिर से इंतजार करना सिखा दिया। और इस गाने का असली हीरो सिर्फ अरिजीत नहीं, अमाल मलिक और अमाल की कॉम्पोजिशन भी है। तो फिर आओ कि एक छोटी सी याद इस गाने में इतनी खूबसूरती से पिरोई गई है, ये नॉस्टैल्जिया भी नया लगने लगता है। ऑफिशियली वे आवारापन अभी काउंटडाउन पर नहीं आया है, लेकिन एक बात लिख लीजिए, अगले हफ्ते जरूर आएगा, और सिर्फ एंट्री नहीं मारेगा, दस्तक देगा। फिलहाल नंबर 14 पर जाइए सजना फ्रॉम धुरंधर 2। Right now, I'm going to play you Baby Do Die Do या Baby Do Die Do का गाना Ish Kameena 2.0।
2: Number 13।
3: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
2: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain.
3: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
2: Relative se advice slow to kehte hain.
4: Kaam ko time do. 25 ghante kaam karo. Dark circles honge to future bright hoga.
2: Isiliye main aapke paas aaya hoon promotion fund ke liye, jiske liye aap 50% equity le sakte ho.
5: Bhai kya kar raha hai tu? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
1: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070-7687.
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 12.

इंटरनेट भी ना कभी कभी लगता है सिर्फ शोर है, लेकिन फिर कहीं कभी एक सुबोध मिल जाता है। पंजाब का ये लड़का जो सालों तक दूसरों के गाने गाता रहा, कवर सॉन्ग्स बनाता रहा, इसी उम्मीद के साथ कि शायद एक दिन लोग उसके गाए हुए गाने YouTube पे कवर कर रहे होंगे। सुबोध शर्मा के गाए कई कवर्स में से एक गाना था मिथुन का कंपोज किया हुआ, अ सॉन्ग व्हिच वाज संग बाय द किंग हिमसेल्फ अरिजीत सिंह। ये गाना सैयारा में अरिजीत का एक लौता गाना था।

0: किस्मत कब आपके लिए दरवाजा खोल देती है इसका कभी पता ही नहीं चलता। और जब मैंने ये सुना, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि आज वही आवाज बेजुनून के साथ आवारापन 2 जैसी आइकॉनिक फिल्म में डेब्यू कर रहा है। तब समझ आया, पहले ब्रेक मिलता था और फिर ऑडियंस मिलती थी, आज ऑडियंस पहले मिलती है फिर ब्रेक मिलता है। इमेजिन, जिस मिथुन के गाने को सुबोध कवर कर रहे थे, आज उसी मिथुन के लिए गाना गा रहे हैं। और सुबोध अकेला नहीं है, राघव चैतन्य कुछ वैसी ही कहानी जीत चुके हैं, वो भी इंटरनेट की ही देन है। आज कॉकटेल 2 का माशूका हर प्लेलिस्ट में है, लेकिन जिस गाने ने उन्हें सीधा मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में ला खड़ा किया, वो था हुआ मैं फ्रॉम एनिमल। A super special request of the week.
1: Special request song.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
1: मेरी पार्किंग में मेरा पड़ोसी गाड़ी पार्क कर देता है, क्या करूं?
2: व्हाट क्या करूं? इट्स सिंपल ब्रो, थैंक यू बोल उसको, थैंक यू। फ्री वैलेट सर्विस दे रहा है यार वो।
3: खोपड़ी तोड़।

0: जिस दिन धुरंधर 2 रिलीज हुई उसी दिन एक और फिल्म ने आना था, पर वो फैसला बदल दिया गया। कभी कभी एक फिल्म का इंतजार नहीं होता, एक इंसान का इंतजार होता है, और पैन इंडिया सुपरस्टार यश उन्हीं स्टार्स में से एक है। KGF के बाद 4 साल हो गए स्क्रीन पर उन्हें देखे हुए। बीच में टॉक्सिक की रिलीज डेट कितनी बार बदली, कभी शूटिंग का रीजन, कभी प्रोडक्शन का रीजन, कभी दुनिया की सिचुएशन का रीजन, लेकिन ऑनेस्टली ऑडियंस को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए बस एक बात मैटर करती है, दैट यश इज कमिंग बैक, और सिर्फ एक फिल्म में नहीं, 2 फिल्मों में। ऑफकोर्स रामायण में वो रावण का रोल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मिलेगी टॉक्सिक। और जब इसका टीजर आया था सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर टॉक्सिक है क्या, व्हाट इज इट अबाउट? तो चलो इसका जवाब खुद यश से सुन लेते हैं।
1: इन इंडिया वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, बट स्टेट ऑफ इंडिया वाज स्टिल अंडर पोर्चुगीज कंट्रोल टिल 1961. सो द स्टोरी इज सेट इन दैट एरा वेयर इट वाज टाइम वेयर लॉट ऑफ पोर्चुगीज वेयर, इंडियंस वर देयर, सो इन बिटवीन दैट देयर वाज ट्रेड, लॉट ऑफ पोर्ट बिजनेस, सो इन दैट एरा इफ देयर इज स्ट्रगल फॉर पावर, ग्रीड, and then gangster, you know, all the gangster things can happen with lots of Tommy guns and action. With that, there's a lot of complex human emotions where we there's a deep love story in it, there's a brother-sister sentiment, and also it's a father and son revenge saga. So it's a very interesting package.
0: तो सेटिंग पुराने दौर की है, इसमें गैंगस्टर्स हैं, एक पावर स्ट्रगल है, प्यार भी है, और साथ में रिवेंज भी, यानी एक प्रॉपर लार्जर देन लाइफ सिनेमैटिक मसाला यूनिवर्स। लेकिन टीजर के बाद जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट किया था वो है इस फिल्म का म्यूजिक, क्योंकि विशाल मिश्रा और राजशेखर की जोड़ी जब भी साथ आई है खाली हाथ नहीं गई। एनिमल में पहले भी मैं, एंड देन सयारा में तुम हो तो, और अब टॉक्सिक में तबाही। नाम भी वही, एनर्जी भी वही, और यश के स्क्रीन प्रेजेंस के साथ गाना बिल्कुल उसी स्केल पर सोचता है। बस एक वार्निंग दे रहा हूं, अगर इसका वीडियो देखने वाले हो तो बच्चों को थोड़ा दूर ही रखिएगा, इट्स नॉट सेफ फॉर देयर व्यूइंग। मिर्ची टॉप 20 पर डेब्यूइंग इन द टॉप 10, और नंबर 9 यह टॉक्सिक का तबाही। नंबर 9।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot. Mirchi. इसका बना उसका बना सबका बना क्या बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
1: Mirchi मुर्गा. Hello.
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया हेलो.
1: Who's this?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे Who's this?
1: कौन बोल रहा है?
2: यार ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ. सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं. सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया. सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए.
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने. और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ only on Mirchi. It's hot.
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट.
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा.
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट
11: नंबर 8.

0: धमाल इज अ सर्टिफाइड ब्लॉकबस्टर और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत लोग इसे एंजॉय भी करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन वेरी रिसेंटली मुझे एक अजीब सी रियलाइजेशन हुई। बचपन में मुझे कभी समझ ही नहीं आता था कि मम्मी पापा हर बार वही पुराने गाने आखिर क्यों सुनते थे। इतने नए गाने आ रहे थे फिर भी उन्हें सुनना था। मोहम्मद रफी को, किशोर कुमार को, लता जी को, आशा जी को, और तब लगता था शायद वो नए म्यूजिक को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। लेकिन आज समझ आया, कुछ गाने पुराने नहीं होते, हम उनकी उम्र के हो जाते हैं। YouTube पर वीडियो सर्व करते करते अचानक एक वीडियो पे आके मैं रुक गया। किसी शादी में एक वायलिनिस्ट मोहब्बते की धुन बजा रही थी, और जैसे ही ये थीम बजी मैं फिल्म को याद नहीं कर रहा था, मैं अपनी जिंदगी याद कर रहा था। यस, आज देखते हैं तो मोहब्बतें एक बड़ी फ्लॉट सी फिल्म लगती है। प्रीमाइस ओवर द टॉप लगता है, कुछ सीन्स जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक लगते हैं, लेकिन फिर देयर इज शाहरुख खान, हाथ में वायलिन, कंधे पर स्वेटर और ये ट्यून, और बस सारी क्रिटिसिज्म चुप हो जाती है। यही तो कमाल है कुछ कॉम्पोजिशंस का, वो आपको फिल्म याद नहीं दिलाती, वो आपको आप याद दिला देती है। इस ट्यून का कमाल देखिए, लगभग 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी जब ये ट्यून बजती है, वी जस्ट आर ट्रांसपोर्टेड टू दैट टाइम, द शाहरुख खान ईरा, अमिताभ बच्चन एज नारायण शंकर, वो तीन लव स्टोरीज और गुरुकुल की ये कहानी, यू जस्ट नो। लेकिन जिस ईरा में अब हम हैं और जिनके गाने हम सुन रहे हैं, अगर आंख बंद करो तो याद नहीं आता कि फिल्म में क्या हुआ था। टेक द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन फॉर एग्जाम्पल, चुनरी चुनरी, आपको हमेशा सलमान खान और सुष्मिता सेन ही याद आएंगे, नया वर्जन उतना याद नहीं आएगा। और अगर एक और धुन है जो हर बार वक्त को थोड़ी देर के लिए रोक देती है, तो वो है ये कॉम्पोजिशन, हिंदी फिल्म्स के इतिहास के सबसे लेजेंडरी गानों में से एक, एन अनपैरेलल्ड परफेक्ट कॉम्पोजिशन बाय शंकर एहसान लॉय, लिखा है इस देश के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक जावेद साहब ने, एंड इट हैज बीन संग बाय द फ्लॉलेस, द परफेक्ट सोनू निगम। मेरा रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक,
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
5: मिर्ची इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 5.

हर फिल्म मेकर का एक सपना होता है, एक ऐसी फिल्म बनाना जिसे लोग सालों बाद भी याद रखें। लेकिन फिर एक कहानी ऐसी भी है जिसे याद रखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, वो बस याद रहती है। रामायण आज सिनेमा उस दौर में खड़ा है जहां उसके पास लगभग सब कुछ है, आईमैक्स, डॉल्बी एटमॉस, सीजीआई व्हिच लुक्स अल्ट्रा रियल, वर्चुअल प्रोडक्शंस, ग्रीन स्क्रीन्स, टेक्नोलॉजी। आज फिल्म मेकर्स पूरी दुनिया खड़ी कर सकते हैं, समंदर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, शहरों को हवा में उड़ा सकते हैं, और वो सब दिखा सकते हैं जो कभी सिर्फ इमेजिनेशन हुआ करती थी। लेकिन फिर भी एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब टेक्नोलॉजी के पास भी नहीं है, रामायण को और बेहतर कैसे बनाया जाए, क्योंकि रामायण की ताकत कभी उसके विजुअल्स थे ही नहीं, उसकी ताकत थी उसके किरदार, उनके इमोशंस, उनके फैसले, उनकी वैल्यूज, और सबसे बढ़कर हर जेनरेशन का उस कहानी से अपने खुद का रिश्ता। इसलिए मुझे लगता है रामायण का असली चैलेंज कभी उसकी कहानी सुनाना थी ही नहीं, वो तो हजारों सालों से सुनाई जा रही है। असली चैलेंज है सिनेमा उस कहानी में ऐसा क्या जोड़ता है जो पहले कभी किसी ने महसूस नहीं किया। अगर रणबीर कपूर, यश, सनी देओल और पूरी टीम ये कर गई तो ये सिर्फ एक कामयाब फिल्म नहीं होगी, ये इंडियन सिनेमा के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा। लेकिन फिलहाल इस दुनियादारी वाले काउंटडाउन पर नंबर 4 पर इस हफ्ते है माशूका फ्रॉम कॉकटेल, लेकिन काउंटडाउन आगे बढ़ेगा गुरु रंधावा के गाने कहर के साथ, विच इज ऑन नंबर 3।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: जिनेलिया एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
4: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए।
5: अलार्म लगा है। ओह गॉड, हेलो जिनेलिया, सॉरी यार, टाइम हो गया, सॉरी।
4: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
3: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
7: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM Mirchi 1 It's hot.
0: Surin ke saath only on Mirchi It's hot.
11: Number 2.

एक गाना जब बहुत बड़ा हिट बन जाता है, हम उसे एक्टर के नाम से याद रखते हैं, कभी सिंगर के, कभी फिल्म के, लेकिन उस गाने के पीछे कितने लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं उसकी बात बहुत कम होती है। पिछले कुछ दिनों से सैयारा फिर से डिस्कशन में है। Because the song is out of the countdown after almost 60 weeks, लेकिन इस बार वो अपनी कामयाबी की वजह से डिस्कशन में नहीं है, रॉयल्टीज को लेकर हुई एक पब्लिक कॉन्वर्सेशन की वजह से। एक तरफ है कंपोजर तनिष्क बागची, जिनका कहना है कि उन्हें टाइटल ट्रैक के रॉयल्टीज नहीं मिले। दूसरी तरफ यशराज फिल्म्स ने क्लैरिफाई किया है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सारी पेमेंट्स और रॉयल्टी ऑब्लिगेशंस पूरी की जा चुकी है। देखो सच क्या है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा मिलेगा, हमें नहीं पता। एंड तनिष्क बागची ने वो पोस्ट जो है वो डिलीट भी कर दिया है। लेकिन

0: एक बात मैं जरूर जानता हूँ, जब कोई गाना इतना बड़ा बन जाता है ना जैसे सैयारा बना, तो वो सिर्फ एक सिंगर का नहीं रहता, ना सिर्फ कंपोजर का रहता है, ना वो फिल्म का रहता है, वो हम सबका हो जाता है। बस उम्मीद इतनी सी होती है कि जिस गाने को इतना प्यार मिला उसे बनाने वालों को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिले। वैसे हर जनरेशन का एक साउंड ट्रैक जरूर होता है, पिछले साल वो साउंड ट्रैक था सैयारा, लेकिन एक रोमांटिक गाना और भी था विच फॉर मी वॉज एट पार विद सैयारा, जिसमें अरिजीत का फिर एक मास्टर क्लास सुनाई देता है, कंपोज्ड बाय द सेंसेशन नोन एज शाश्वत सचदेव, वंस अगेन ऑन नंबर 1, दिस इज गहरा हुआ
1: नंबर 1।

0: इस गाने की गहराई में मैं कितने महीनों से डूबा हुआ हूँ एंड फिर भी आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट बट आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस बिकॉज मेरा टाइम अप हो चुका है बट रिमेम्बर आप और मैं यहाँ इसलिए मिलते हैं because we love our movies. So till the next time we meet on another episode of the Mirchi Talk 20, this is Suren, over and out. Mirchi
1: Talk 20. Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: Hello, Mirchi Helpline?
3: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन बता बेटा सवाल क्या है
2: मुझे लंबे नाखून पसंद है पर मैं हमेशा उन्हें चबा लेती हूँ क्या करूँ
3: अरे चबा के खाना तो अच्छी बात है कीप इट अप और चाहिए तो ब्यूटी पार्लर चली जा बहुत वैरायटी है उनके पास
4: खोपड़ी तोड़ खोपड़ी तोड़

शाम शानदार only on 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट शाम शानदार brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: सलाम नमस्ते कतर वालों, क्या हाल चाल। वो कहते हैं ना कि गर्मी गर्मी को काटती है, तो हाँ जी, इतनी तपती भरी गर्मी में भी ना आपको जो चाय की प्याली में जो शांति मिलती है ना, वो ठंडे वंडे में नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, बस चाय की प्याली आपने हाथ में लेनी है, ट्यून इन करना है मुझे, क्योंकि मैं आ गई हूँ आपकी शाम को शानदार बनाने और सुनाने। हसीन गाने और बातों के साथ सिलसिला जारी रहेगा, तो ट्यून इन रखिए 89.6 को। इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Ja.
1: Mirci.
2: Iska bana, puska bana, saka bana. Ja bana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
4: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
4: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
4: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
4: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
4: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
4: अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
4: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
3: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
4: ओके मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
4: कुकर? हाँ कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
4: अच्छा
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
4: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
4: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
4: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
4: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
4: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
4: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
4: अबे कौन बोल रहा है तू?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
4: यार यार। ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
6: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
7: ओ भाई जोश है फुल हाई, और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
8: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: चादर के लिए एक और ऐसा प्राउड मोमेंट। जहाँ CNBC ने 2026 के लिए गल्फ और इजिप्ट के टॉप 100 बिजनेस लीडर्स की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में कतर के 9 बिजनेस लीडर्स ने अपनी जगह बनाई है। What an achievement, guys! ये एक ऐसा prestigious list है जहाँ पे उन leaders को highlight करता है जिनकी vision, leadership और innovation से पूरे region की economy आगे बढ़ रही है। इस list में 11 major sectors को cover किया गया है, जिसमें से energy, banking, real estate, telecom and fintech ये सब आते हैं। कतर की तरफ से इस list में शामिल हैं कतर National Bank, कतर Islamic Bank, Ooredoo, Vodafone Qatar, कतर Gas Transport Company, कतर International इस्लामिक बैंक, बारवा रियल एस्टेट और लेशा बैंक जैसे कई टॉप CEOs एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स इंक्लूडेड है। बाकी ये सिर्फ लीडर्स की एक पर्सनल सक्सेस नहीं है, ये बात है कतर की। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द लीडर्स एंड ऑल्सो कंग्रेचुलेशन कतर फॉर दिस इनोवेशन, ग्रोथ एंड एक्सीलेंस। एंड इसी के साथ हम बढ़ते रहेंगे और गाने सुनाती रहूंगी आपको मस्त वाले, और मेरे साथ बने रहिए ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हाय गर्मी, क्या आप भी बादशाह की आवाज में यही बोल रहे हैं हाय गर्मी? गर्मी के हालात तो ऐसे हैं कि आप उठते बैठते यही कहोगे हाय गर्मी, लेकिन आपको राहत देने के लिए और इस गर्मी में आप एकदम आराम से घूम सके, इसका समाधान लेके मैं आ चुकी हूँ आपके साथ। हाँ जी, कतर में है ऐसी ही बहुत सी जगहें जहाँ पे आप इस धूप में भी घूम सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे इंस्टॉल्ड हुए हैं एयर कंडीशनर। यस, एयर कंडीशनिंग है वो प्रॉपर। आप एसी में आराम से घूम सकते हैं, वो भी आउटडोर। ठीक है, मैं आउटडोर की बात कर रही हूँ। जी हाँ, उसमें से कुछ है ओम अल सनीम पार्क, प्लेस वेंडो मॉल लुसेल, अल गराफा पार्क, टोर्नेटो टावर, ड्यून प्लाजा वेस्ट बे, ऑक्सीजन पार्क, 21 हाई स्ट्रीट, कतारा कल्चरल विलेज, अल हज मॉल, वेस्ट वॉक अलवाब, क्रिस्टल वॉक वे, गिवान आइलैंड। ओ माय गॉड, एक बात तो माननी पड़ेगी यार, अमीर कंट्री में रहने के ना ये बहुत बड़ा फायदा है कि आप आउटडोर भी एसी में घूम सकते हैं। फॉर मोर अपडेट लिसन टू 89.6 इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
2: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगेन एज रेडियो जॉकी। करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
3: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था। बहुत मजा आता था, मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
1: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची हिट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची हिट्स हॉट।
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
5: FM Mirchi 1. It's hot.

0: बन जाएगा ना आपका भाई, क्योंकि बात ही ऐसी है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: जी हाँ, वेदर कुछ इस प्रकार कह रहा है कि 42 डिग्री सेल्सियस इस समय है और आपको फील कराएगा ये 51 डिग्री। इतना ज्यादा जलम जली, तभी तो बोल रही हूँ बाहर निकलेंगे तो आपका सच्ची में रोस्ट ही हो जाएगा पूरा शरीर। इसीलिए बहुत जरूरी है तभी निकले। बेशक आप हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, और अगर जरूरी नहीं है तो ना ही निकले तो ही बेटर है। बातों का सिलसिला जारी है शाम शानदार में, और सुन रही मुझे यानी कि मिर्ची शको ने 89.6 मिर्ची वन एंड सॉल्ट।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100813.

0: Emergency Helpline?
1: मिर्ची हेल्पलाइन बताओ क्या प्रॉब्लम है.
0: सबको 6 फुट हाइट वाले लड़के चाहिए. व्हाट अबाउट मी?
1: अरे भाई तुझे क्या चाहिए मुझे कैसे पता चलेगा? तो खुद डिसाइड कर.
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.

शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: क्या आप जानते हैं कि कतर का पासपोर्ट पूरे गल्फ में सेकंड नंबर पे आता है? और अगर वो सेकंड नंबर पे आता है तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि 112 कंट्रीज में से कोई भी कंट्रीज ये जाएंगे तो वहां पे वीजा फ्री एंट्री और वीजा ऑन अराइवल मिलेगा इनको। और जो रेजिडेंट जिनको 5 साल से ऊपर हो गए हैं उनके लिए भी कुछ 10-12 कंट्रीज इधर उधर से निकाल के कर देते कि वीजा ऑन अराइवल और फ्री वीजा वाली फैसिलिटी इनको भी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। बाकी ऐसे ही मजेदार बातों के साथ जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 एंड सॉल्ट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La viva la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: सुमन जी, गुड इवनिंग. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है.
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे?
3: मैं होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है.
3: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3K/5/14A, 1st floor. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
2: मेरा सनशाइन कैंसर है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है.
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है.
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
2: बी पॉजिटिव. दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा. और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो.
3: वही तो मैं आपको. अरे मैडम,
2: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं. अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया. रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है. आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं.
3: दोबारा कॉल करेंगे. आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं. मैं अभी आपको कॉल बैक.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on Mirchi. It's hot.
5: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
6: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more, all at one place. Call 5572-7387 today.
7: Salmani to sirf chore kare.
8: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
9: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: पॉसिबल का अपने आप में ही मतलब बनता है आई एम पॉसिबल, और इससे ना मुझे कतर की याद आती है। और आप सोच रहे होंगे कि कतर की याद क्यों आती है, कि कुछ साल पहले कतर की जमीन एक ऐसी जमीन थी जिसको रेगिस्तान कहा जाता था, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत दिखती थी। लेकिन अब अगर आप देखेंगे हर चीज पॉसिबल है कतर में। बात करें पेड़ों की, पौधों की, पार्क्स की, हरे भरे पार्क्स की, ये सब आपको कतर में दिखता है। लेकिन इसके अलावा अगर हट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपैलिटी लेके आई है एक एक्सपैंडेड प्रोग्राम, जहाँ पे एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, जहाँ पे फार्मर के लिए भी घर बनाए जाएंगे जो मॉस्किटो नेट के साथ बने होंगे या इंसेक्ट प्रूफ नेट के साथ। उसके अलावा जो इनिशिएटिव कतर इस समय ले रहा है वो है इंक्रीजिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे हम स्ट्रेंथन करेंगे फूड सिक्योरिटी एंड प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल फार्मिंग ऑल अक्रॉस द कंट्री। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एंड आई थिंक अभी नीड ऑफ द आवर भी यही है कि इस समय कतर अपनी वेजिटेबल्स अपने देश में उगाए और अपने ही तरीके से उगाए। यही चीज मैं आप लोगों को कहना चाह रही थी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, सब कुछ पॉसिबल होता है। ये बेहतरीन एग्जांपल कतर हमें देता है। बाकी स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 पर शिवान इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: जिंदगी आपको मौका हर बार नहीं देती, और जब देती है उस मौके का सदुपयोग करना बड़ा ही जरूरी है। तो ऐसे ही मौका परस्त अगर आप हैं और चाहते हैं कुछ डिफरेंट खरीदना, तो आपके लिए एक अमेजिंग सी जगह लेके आई हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लेके आई है द पीनल एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे प्रोडक्ट्स जो इनमेट्स ने बनाए हैं, एंड ये अवेलेबल है इस ऐप में जिसका नाम है सोम ऐप, जो आज से शुरू हो चुकी है। अगर आपने भी आप भी इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप सोम ऐप में जा सकते हैं और इनके प्रोडक्ट्स जो इनमेट्स द्वारा बनाए गए हैं आप उनको परचेज कर सकते हैं। तो ऐसी ही खूबसूरत सी बातों के साथ सिलसिला जारी रहेगा, गानों के साथ, मस्ती के साथ, बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद। इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स सिंपल सीधा नो टेंशन चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स TNC अप्लाई
1: मेरे बेटे आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे
2: अरे करण अर्जुन आमिर शाहरुख ऋतिक अक्षय इमरान सबके गाने आएंगे दीदी
3: आएंगे दीदी
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन इट्स हॉट

0: Mirchi helpline?
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: यार ये धूप इतनी है कि साइलेंसर से ज्यादा तो सीट गर्म हो जाती है, क्या करूं?
1: अरे गोचू, तो एक काम करना, साइलेंसर पे बैठ के चला जा, सिंपल।
2: ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: Why go outside to see a doctor when health care can come to you?
4: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more. All at one place. Call 5572-7387 today.
5: नहीं! बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना!
6: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
4: Qatar ka number one radio station.
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: सो गाइस, अब वक्त आ गया है आज के शो को रैप अप करने का। आप सबके साथ ना वक्त बिताना हमेशा ही बहुत स्पेशल होता है। याद रखिए, लाइफ में ना छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना मत भूलना। एक स्माइल किसी का भी दिन बदल सकती है। तो अब मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। कल मिलूंगी फिर यहीं पे आप ही के साथ बातें करते हुए, गाने सुनाते हुए। आप टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज मी मिर्ची ईशा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर। स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: तारीखें भूल जाती हैं, नाम भूल जाते हैं, पर कुछ गाने हमें एक पूरा जमाना याद दिला देते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहां हफ्ते के हॉटेस्ट टॉप 10 इंडिपेंडेंट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है, सम स्पेशल शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, जसलीन रॉयल बादशाह का गाना इनाम। पिछले हफ्ते से दो पोजिशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक और नंबर 10। उसके बाद नई नवेली एंट्री, ज़ारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी। इस गाने ने डेब्यू किया है ऑन गाना नंबर 9 एंड इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 9।

0: ज़ारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी, नई नवेली एंट्री, डेब्यू किया है सीधा ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। गाने आर्ट एक तरह से एक टिकट होते हैं टू अ मेमोरी, एंड सम ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माय लाइफ आर ऑफ दोस कॉलेज डेज। ये बात कभी सोची है कि जब हम उस उम्र में थे जब कुछ ज्यादा पता नहीं था तो हम सबसे बहादुर थे। उस उम्र में जो भी बनाया, जो भी सपने देखे, जो भी लिखा, आधा अधूरा या पूरा, उसमें एक चीज थी जो अब बाद में हम कहीं खो देते हैं, एंड दैट इज होप। वो हमारी जिंदगी का सबसे रॉ फेज होता है, जब हम ओवर कैलकुलेटिव नहीं होते कि इससे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, करियर बनेगा या नहीं, बस दिल में कुछ था और लिख दिया। एंड दैट्स व्हाई इन द म्यूजिक स्पेस एज वेल, अगर आप देखेंगे सम ऑफ द बिगेस्ट पॉप स्टार्स जो हमने देखे हैं इन द लास्ट 4-5 ईयर्स हैव बीन दीज यंग गन्स। बिली आइलिश द ग्लोबल आइकॉन का एग्जाम्पल ले लो, उनका गाना ओशन आइज तब फटा जब वो सिर्फ 18 साल की थी। हमारी अपनी जीनी जो देहरादून से है अब मुंबई में गाने बनाती हैं, उनके गाने लाइक सुकून, आशियाना, वो जनता के साथ कनेक्ट इसलिए ज्यादा करे बिकॉज उसकी राइटिंग बहुत ऑनेस्ट थी। तो ये ऑनेस्टी और ये रॉनेस कोई टेक्निक नहीं है या कोई हिम्मत नहीं है, ये आई थिंक सोचने की हिम्मत है जो कहीं ना कहीं आई रियली फील वो उम्र अलाउ करती है। पर असली सवाल तो ये है कि जब हम कभी ये हिम्मत खो देते हैं तो क्या वो वापस मिल सकती है, क्या हम जीरो पे आके वापस शुरू कर सकते हैं। एक आर्टिस्ट है लखनऊ से जिनका एक गाना बहुत पॉपुलर हो रहा है, गाने का नाम है तारे, आर्टिस्ट का नाम है फरक, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट सॉन्ग्स जो जनता के दिल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें एक लाइन है जो आपको रोक देगी, वो कहता है, परिंदा पिंजरे में इतने दिन रहा कि अब आसमान से ही डर लगता है। देयर सो मच टू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग बट आई विल लेट यू सिट विद इट। तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। आर्टिस्ट का नाम है फरक, गाने का नाम है तारे। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10 एज आवर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। एंजॉय।

0: वो घर छूटा है जब से कम बखत कोई आसरा ना है, ये कागज कांपता जब होते दिल के घाव ताजा है।
1: के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, sakka bana. Rambala. Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi murga.
3: Hello? Hello?
4: Sir, very good evening. Bank support.
3: हाँ बोलिए
4: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या
4: बात है सर, I'm so sorry, पूरा बताइए
3: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
4: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
3: पागल पागल है,
4: अब तो देने पड़ेंगे सर.
3: हेलो.
4: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
3: कौन बोल रहा है? विपिन.
4: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
3: पागल
4: है क्या? दिमाग खराब है क्या?
3: हेलो
4: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
3: उसके पैसे क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
4: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
3: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
4: जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
5: अरे यार इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
6: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से.
5: योर स्पेशल ऑफर?
6: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है. ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए.
5: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
6: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है.
5: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए. अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो.
7: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट.
8: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा.
9: दोनों मिलेगा.
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
11: 89.6
12: 89.6 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.
0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath on Mirchi
13: number 7.
14: How to

0: कैश किंग की आवाज में एक गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने हर्ष नुसी की आवाज में उन्हीं के लिरिक्स सुनी की कॉम्पोजिशन वाला गाना सुना, गाने का नाम साडी सुन ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो @rjkanika ऑन इंस्टाग्राम। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। म्यूजिक आर्ट है, आर्ट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। एंड एक म्यूजिक का फॉर्म जो सबसे ट्रू है इन द वे इट एक्सप्रेसेस इज हिप हॉप। ये जॉनरा ना किसी स्टूडियो में पैदा नहीं हुआ था, ये वहां से आया है जहाँ लोगों को माइक नहीं दिया जाता था लेकिन दिल में कहानियां बहुत हैं। जहाँ तकलीफ कोई सुन नहीं रहा है तो एक्सप्रेशन म्यूजिक बन गया। हर कंट्री का, सिटी का, एरिया का रैप का फॉर्म अलग होता है, कॉज वहां से जुड़ी कहानियां अलग होती है। दिल्ली हिप हॉप अलग है, मुंबई हिप हॉप अलग है, केरला का हिप हॉप बहुत अलग है। पर व्हाट्स कॉमन अमंगस्ट ऑल दीज फॉर्म्स इज द रियलिटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ द आर्टिस्ट। पर कहीं ना कहीं इस पूरे मूवमेंट के पोस्टर बॉय रहे हैं डिवाइन, जिनका असली नाम विवियन फर्नांडिस है। बहुत सारे लोगों को लगता है दैट गली बॉय जो मूवी बनी थी वो उनकी लाइफ पे बेस्ड थी। दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। उन्होंने उस मूवी में कंसल्ट किया था, बहुत हेल्प करी थी, उनका म्यूजिक है बट वो उनके बारे में नहीं है। बट देयर आर सॉन्ग्स लाइक मेरी गली में जो पूरे देश ने पहली बार सुना ऑन अ बिगर लेवल, कॉज वो गली बॉय जैसी मूवी में आया। पर उसी साउंड ट्रैक में एक गाना था कॉल्ड आजादी। इस गाने के प्रोड्यूसर है डब शर्मा, जो चंडीगढ़ का एक लड़का है जिन्होंने अपने कमरे में बैठकर ये कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, किसी फिल्म के लिए नहीं, किसी ऑडियंस के लिए नहीं, बस अपने लिए। एंड द सॉन्ग समहाउ मेड इट टू अंकुर तिवारी, जो उस वक्त गली बॉय के म्यूजिक को सुपरवाइज कर रहे थे। एक मेल गया, एक मीटिंग हुई, एंड दैट सॉन्ग मेड इट टू द बिगेस्ट मूवी अबाउट एक्चुअल हिप हॉप। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज हैज कम आउट ऑफ द कल्चर। डब शर्मा डिवाइन का गाना, गाने का नाम है आजादी। हर बार सुन के गूज़बम्स आ जाते हैं। गाना इंडी टॉप 10 पर, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: नहीं है सांस क्यों? एक तरफ तराजू, तेरी हंसी मेरे आंसू, घुट घुट की क्यों सांस लूं? उसे देगा क्या हिसाब
1: तू? तेरा पिंजरा मजाल ने खाना, परिंदे आने उड़ जाना, तेरा पिंजरा तेरा मुक जाना, सारा लाना बाना, परिंदे आने उड़ जाना तेरा।

0: ये गाना सुनने के बाद हाथ अपने आप सर पे चला जाता है. मैड रिस्पेक्ट टू डिवाइन फॉर दिस सॉन्ग, वन ऑफ द टॉप 5 सॉन्ग्स इन देसी हिप हॉप. एट आरजे करेगा ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड क्विकली इस इंडी पॉप क्विज का आंसर करो. डिवाइन एंड करण औजला ने एक कोलैब करके एक एल्बम रिलीज करी थी आज से 2 साल पहले. जल्दी बताओ उस एल्बम का नाम क्या है. काउंटडाउन का अगले वाला गाना अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 7 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: Blana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार. तूने सुना एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया.
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है. और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी.
0: मिर्ची, इट्स हॉट. कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है. क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म. RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ.
0: अभी कॉल करें 3100813.
6: दोस्ती का एक उसूल है मैडम. नो सॉरी नो थैंक यू.
7: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
8: तुम मिर्ची सुनो ना जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
9: खूब मिलेगा, मिलेगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
0: Gana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.

0: आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां की आवाज में एक गाने का नाम है ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, इस हफ्ते भी दो पोजीशन ऊपर जम करके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। कुछ गाने इस हफ्ते हॉट होते हैं, अगले हफ्ते नहीं, बट कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं एक एड्रेस बन जाते हैं हमारे लिए, एड्रेस टू अ मेमोरी, अ ट्रिप टू नॉस्टैल्जिया। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती हैं दीवाना।
0: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

गाने का नाम है मायरी, साल 2000, एल्बम फिर धूम पलाश था इनकी आवाज में। जरा याद कीजिए यार वो जमाना, कैसेट की रील पेंसिल से घुमाना, इंतजार करते रहना कि मेरे वाला गाना आएगा। आई रिमेम्बर आई वॉज ऑब्वियसली इन स्कूल जब मैंने गाना सुनना शुरू किया था, बहुत अच्छी धुन लगती थी। एंड दैट लाइन, दैट बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलके मायरी, शायद मैं इतनी छोटी थी दैट मैंने उसका मतलब ही नहीं समझा, एंड मैं बस बहुत इतराती थी ये गाना सुन के, सजती थी सवरती थी। एंड एज वी कीप ग्रोइंग अप वो गाने समझ में आने लगते हैं, उनके पीछे के मतलब बदलते जाते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे मायरी में वो अपनी माँ से ये कहानी बता रहे हैं ये भी नहीं समझ में आया था, लेकिन नाउ इट ऑल साउंड सो ब्यूटिफुल दैट वो जिस लड़की की तारीफें कर रहे हैं, जिस लड़की के बारे में बता रहे हैं, जिसकी याद उन्हें आ रही है, वो अपनी माँ को बता रहे हैं। पर यही तो बात है, गाना नहीं बदला यार, हम बदल गए। गाना 1998 में बना था, फ्रंट मैन पलाश सेन की आवाज, यूफोरिया द बैंड, जिसने आज भी ऑलमोस्ट आफ्टर 45 इयर्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कभी कोई फिल्म का गाना नहीं किया। द रियल ओजी पोस्टर बॉयज ऑफ पॉप म्यूजिक, अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, यूफोरिया द बैंड का गाना, गाने का नाम है मायरी, इज योर टिकट टू नॉस्टैल्जिया टुडे ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

I swear, गाने are like memories जो हमें transport कर देते हैं. I was taken back to my childhood home while listening to this song. पलाश सेन की आवाज में Euphoria the band का गाना मायरी still hits home exactly how it used to 10 years back or 20 years back. And that's why it's a classic. At RJ Kanika on Instagram पर आओ कोई भी गाना from the 90s, 2000s जो आज भी आपको लगता है it hits home buddy. मुझसे आगे शेयर करो. मैं और अश्का है, माई साउंड प्रोड्यूसर, हम आपके रिकमेंडेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. गाने का नाम है डीलर, दिलजीत दोसांझ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. 18 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. डीलर इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: Na, Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: Janelia Deshmukh.
4: Are you an honest critic?
5: I'm an honest critic, but I'm also good for your ego.
4: Arey kya baat hai?
5: Like even if you're my friend, I mean,
4: मुझे validate कर ले यार. Hello, Janelia. I'm not feeling great.
5: अरे honest हूँ मैं.
4: You're a queen. Where's your crown?
3: She's an honest critic, but a very funny person also. ये थी Janelia Deshmukh on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
6: Hello, Sharps. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं
7: office के toilet में toilet paper white नहीं yellow लगाओ, profit आएगा.
6: relative से advice लो तो कहते हैं
8: काम को time दो, 25 घंटे काम करो, dark circles होंगे तो future bright होगा.
6: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ promotion fund के लिए, जिसके लिए आप 50% equity ले सकते हो.
9: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
10: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070-7687.
0: इंडी टॉप 10
2: कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
3: मिर्ची सुन रहे हैं आप. बंदी का नाम है आरजे कनिका, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री थी, हमारा 90s-2000s का इंडी पॉप क्लासिक था. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं. इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक. लेकिन एक क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप. जसलीन रॉयल बादशाह का गाना इनाम वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. फिर एक नई नवेली एंट्री, ज़ारा खान स्केल्स का गाना मूव बॉडी ऑन गाना नंबर 9. संजू राठौर का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 8. हर्ष नुसी का साड़ी सुन पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके इस हफ्ते था ऑन गाना नंबर 7. ऐश किंग का किनिया सोनी गोइंग स्ट्रॉन्ग ऑन गाना नंबर 6. इन ऑल ऑनेस्टी ये गाना इस काउंटडाउन का मेरा फेवरेट गाना है. अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 5. आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खा का ए अजनबी अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग ऑन गाना नंबर 4. दिलजीत दोसांझ का डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 3. The top 2 songs of the week, yet again, वही शफल हो रहा है ऊपर नीचे 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन, दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. एंड द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रॉर का गाना, मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा की आवाज में, मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा. पिछले हफ्ते नंबर 2 पर था, 1 पोजीशन ऊपर जम करके इस हफ्ते शीशा इज ऑन गाना नंबर 1. ये दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 2.

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
1: यार एक बात मुझे समझाती नहीं है, कोई भी मूवी डाउनलोड करूं प्रिंट हमेशा खराब निकलती है, क्या करूं?
2: अबे तेरे को पता ही है कि हमेशा खराब निकलती है, तो तू प्रिंटर बदल दे ना।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: ये देखिए, एक ट्रेडिशनल पोएटिक वाइब से इसके लिरिक्स शुरू होते हैं गाने के, जो कि पंची जलोनवी ने लिखे हैं। क्यों ना बोले मुंह से मोहन, ठीक है। दूसरी चीज, ये गाना जो आपने सुना भरे नैना इज बेस्ड ऑन राग भैरवी, जो बहुत ही ऐसे डीपली इमोशनल और लॉन्गिंग फीलिंग देता है। तीसरी चीज, विशाल शेखर जो कि इसके कंपोजर हैं, उन्होंने आवाज तो नंदिनी सरकार की ली है, साथ में इसमें जो आप बैकड्रॉप सुन रहे हो वो सिम्फनी है प्राग फिलहारमोनिक कोयर की। ओके, सो दिस इन टोटैलिटी गिव्स अ ब्यूटीफुल वाइब टू दिस सॉन्ग भरे नैना।
1: मिर्ची कैफे,
0: शो शुरू हो गया है मिर्ची कैफे। मैं हूँ आपके साथ पारुल, ओनली ऑन मिर्ची। इतना सारा स्वागत है आपका आज के शो पे, जहाँ पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसे प्यारे प्यारे बहुत से गाने। वेल आई नो कि इतना कौन सोचता है भाई, इतना सब कुछ म्यूजिक अरेंजमेंट कैसे हुआ है गाने का। हम बस नैना बंद करके गाना सुनते हैं, वाइब इंजॉय करते हैं, और फिर शायद कभी कभार सोच लेते हैं कि हाँ यार बड़ा अच्छा गा रही है ये। या बट दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। अब नेक्स्ट टाइम जब भी ये गाना सुनोगे तो ये छोटे छोटे टिडबिट्स अपने फ्रेंड्स को बता के थोड़ा तो फ्लेक्स कर सकते हो ना। ओह वेल, अगला गाना जो इस शो पे मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, आपको पता है इस गाने की सबसे कूल बात क्या है? 2005 का ये गाना है। जिस एक्ट्रेस पे ये फिल्माया गया, प्रियंका चोपड़ा, पहले उनको ही बोला गया था कि आप ही ये गाना गाओ, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ बज़ कि प्रियंका ये गाना गाने वाली है। तो जब ये लॉन्च हुआ तो सबको लगा कि ये लिटरली प्रियंका चोपड़ा ने ही गाया है, जो उन्होंने बाद में स्टेज पे कहीं परफॉर्म भी किया। बट इसकी ओरिजिनल सिंगर इज नन अदर देन अलीशा। अलीशा चुनाई हमारी फेवरेट मेड इन इंडिया वाली सिंगर। यस, तो इस गाने की खूबसूरती को एंजॉय करो अभी यहाँ पे। मैं आपके साथ रहने वाली हूँ अभी अगले 2 घंटे मिर्ची कैफे पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया हेलो और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस
1: कौन बोल रहा है
2: ये और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये
1: क्या मजाक चल रही है
2: क्या मजाक चल रहा है सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ सर क्या हाल चाल है आपके सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं सर कैसे हैं आप खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए
3: मिर्ची मुर्गा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बड़े और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू
1: कुकड़ू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: अर्ज किया है
6: इरशाद इरशाद

0: IPay payments ka wah tarika. With IPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: सोनू निगम और रबी शेरगिल की आवाज में आपने सुना ये गाना कितनी देर तक 2007 की फिल्म दिल्ली हाइट्स से. यू रिमेम्बर द सॉन्ग
1: मिर्ची कैफे.
0: वेलकम बैक टू मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ ओनली ऑन मिर्ची. और आपको याद है रबी शेरगिल जब अपना एल्बम लेकर आए थे उसके बाद का उनका फिल्मों में ये पहला वेंचर था विद दिस सॉन्ग विद सोनू निगम जो कि उन्होंने खुद लिखा है, कंपोज किया है एंड सोनू के साथ गाया भी है. या सम सॉन्ग्स ऐसे होते हैं ना कि जो हम पहले सुने होते हैं बड़े पसंद होते हैं फिर बीच में कहीं कोई नाता टूट जाता है उनसे और फिर से हम उन गानों को सुनते हैं मजा आ जाता है. इसी बात से मेरे को एक कहानी याद आई. आपको एक बात बताऊं, एक बार ना एक बंदा था जो जिसका ट्रांसफर हुआ था नया नया और वो एक नई सिटी में रिलोकेट हुआ था. ओके, अ सीनियर गाय. तो वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी ऑफिस की परेशानियां, नया शहर, सारी जद्दोजहद में ना काफी परेशान था. और वो एक चाय की टपरी पे जाके बैठा और ऐसा सुस्त सा बैठा था और वो चाय उसने मांगी और बैठ के अकेला पीने लगा. तो जो चाय वाले भैया थे ना उन्होंने पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर ऐसे उनकी तरफ ध्यान गया तो उन्होंने देखकर कहा कि भैया एक और चाय पिलाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया बना के मेरी तरफ से. तो यू नो दैट गाय, उन्होंने एक लुक दिया उसको एंड ही स्माइल्ड अ लिटिल और उन्होंने कहा कि अच्छा भैया ठीक है बना दो, शुक्रिया. तो जब वो उठ के जाने लगा बंदा तो चाय वाले भैया ने बोला कि भैया पैसे नहीं, दोनों मेरी तरफ से, आप परेशान लग रहे हो, बस मुस्कुराओ भैया मुस्कुराओ, थैंक यू करके उन्होंने उनको भेज दिया. वाइल वॉकिंग बैक फ्रॉम दैट चाय की टपरी टू हिज टावर, लिफ्ट में जाते हुए, अपनी सीट तक जाते हुए, यू नो समथिंग चेंज्ड इन हिम. उसने वापस स्माइल की बंदे ने और अगले ही दिन वो चाय वाले भैया के पास एक खबर पहुंची कि जो सामने वाला टावर है बड़ा सारा ऑफिस का, उसके जो नए CEO साहब हैं उन्होंने आपको वहां बुलाया है. तो चाय वाले ने सोचा कि भैया कुछ तो गड़बड़ हो गई, क्या करें हम. जैसे ही वो पहुंचे वहां उनको पता चला कि उनको उस टावर के अंदर एक चाय का स्टॉल लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है. क्योंकि जो नया बंदा था वहां बैठ के जिनको छोटी सी काइंडनेस उस चाय वाले ने दिखाई थी वो वहां का नया CEO था हु हैड अ लॉट ऑफ पावर्स एंड हु वाज रियली इंप्रेस्ड विद वो छोटी सी काइंडनेस का जेस्चर. जस्ट इमेजिन छोटी छोटी बातों से कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं. मुझे बोलते हुए भी गूज़बम्स आ गए. नाइस ना. तो कभी कभी छोटी सी काइंडनेस, तो आई थिंक मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि कितनी जरूरी है काइंडनेस, स्पेशली अजनबियों के साथ. सोनू निगम की आवाज में सुनो ये अगला गाना ओनली ऑन मिर्ची कैफे. मैं हूँ आपके साथ पारुल. स्टे ट्यून्ड.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: याद आई आपको असोका की करीना कपूर, व्हाट अ सिजलिंग परफॉर्मेंस शी हैज गिवन इन द फिल्म
1: मिर्ची कैफे।
0: सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और मुझे इससे याद आता है गलेटिया इफेक्ट। क्या आपने इसके बारे में कहीं पढ़ा है? मैंने एक ऐसी रील स्क्रॉल करते करते राज शमानी के एक इंटरव्यू में देखा कि वो बोल रहे हैं कि यूनिवर्स उनको नहीं वो चीज़ देती है जो बहुत ज़्यादा ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं और मांगे जा रहे हैं और वेट कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं, बल्कि कभी कभी यूनिवर्स उनको वो चीज़ या वो पोजिशन या वो पैसा दे देती है जिनके पास वो ऑडेसिटी है, चाहे उनके अंदर स्किल सेट कम है, लेकिन जिनके अंदर वो एक्सेप्टेंस, वो पावर, वो ऑडेसिटी है, जो कह देते हैं कि हाँ भाई मैं ये कर लूंगा, मैं फोड़ दूंगा, मुझे करने दो, बस मैं कर दूंगा, जिनके अंदर वो गट्स हैं, कभी कभी उनको वो चीज पहले मिल जाती है rather than जिनको जो अपने हिसाब से डिजर्व कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि उस वक्त जब अशोका फिल्म आई थी तब बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस थी जिनको ऐसा लगा होगा कि यार ये करीना ने इतना बोल्ड अवतार निभा लिया, शी इज लुकिंग अमेजिंग इन दैट, जब हम भी ये सब कर सकते थे। सो या दैट्स अ लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू यू। बाकी अगला गाना जो मैं आपके लिए मिर्ची कैफे पर स्पेशली लेकर आई हूँ, आपको बता दूं 1996 से ये टाइम मशीन में जाके मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अलका याग्निक और हरिहरन की आवाज में। ये ना संजय लीला भंसाली की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी खामोशी द म्यूजिकल। इसका एक एक गाना चुन चुन के आप सुनो, आपको लगेगा समथिंग इज हैपनिंग इन योर हार्ट। ये गाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो पहले लिरिक्स थे इसके आंखों के दरमियां हम खुद से मिल रहे हैं, लेकिन बाद में मजरू सुल्तानपुरी ने इसको लिखा इंटू बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं। Listen to this beautiful track only on Mirchi Cafe right here with me, Parul. अभी आती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। Stay tuned, it's hot.

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
2: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ ये गाना भी, बड़ा एम्बेरेसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे वो सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे में लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
1: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वॉज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
3: Our business is our business. None of your business.
4: But Didi, our entertainment is your entertainment. Qatar ka number one radio station.
5: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: सोचो कि अगर गाना ऐसे होता, आमी तुम्हाके भालोबाशी तारे गिनु तेरे लिए, या फिर यू नो किसी और लैंग्वेज में TMO की जगह जो कि स्पैनिश में आई लव यू होता है उसकी जगह कोई और लैंग्वेज में होता तो भी ये गाना क्या उतना ही खूबसूरत लगता. गिव इट थॉट.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. एश किंग और सुनिधि चौहान की आवाज में आपने सुना TMO. एश किंग की आवाज के बारे में मुझे पता है एक चीज इतनी अमेजिंग लगती है कि लिटरली ऐसा लगता है कि अगर आप हवा में उड़ रहे हैं या हवा से बातें कर रहे हैं उस टाइप की उनकी आवाज है. ऐसे फ्लोई जैसे करके जाती है और ऐसे कानों में घुस के खुशी देती है. नहीं आपको नहीं लगता ऐसा? एंड बाय द वे आपको भी ऐसा लगता है क्या कि जो महीने होते हैं जिनमें आपका बर्थडे आता है, अगर उस सेम महीने में किसी एक्टर का या आर्टिस्ट का या सिंगर का भी बर्थडे आता है, या फिर यू नो किसी स्ट्रेंजर से आप मिलते हैं, किसी कोलीग से या किसी बंदे से आप मिलते हैं जो आपको पता चलता है कि अच्छा सेम मंथ में बर्थडे आता है, तो एक ऐसा एसोसिएशन सा नहीं बन जाता अनसेड सा, अरे ये तो मेरा ब्रदर है, ये तो मेरा भाई है. तो मैं आपको बताती हूँ, नहीं जुलाई में मेरा बर्थडे नहीं आता, लेकिन जुलाई में दो ऐसे बहुत ही डिफरेंट शख्स पैदा हुए थे जो कि हैं सोनू निगम एंड हिमेश रेशमिया, जिनके गाने मैं आपको सुनाती ही रहती हूँ और आज भी सुना रही हूँ. सो मैं आज लेकर आई हूँ अभी यहाँ पर हिमेश रेशमिया के खजाने से एक गाना जो आई एम श्योर आपने पहले तो सुना होगा बहुत बार, बहुत वक्त से शायद ना सुना हो. एंड टू ऑल द HR लवर्स, आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले आउट टू यू टूडे फॉर द प्योर लव ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो जब बड़े हो रहे थे इस फिल्म को देख कर यू नो बड़े हुए थे. सो या लिसन टू दिस सॉन्ग आपकी कशिश, ओनली ऑन मिर्ची कैफे विद मी पारुल. स्टे ट्यून्ड, एक और बहुत जबरदस्त कहानी लेकर आने वाली हूँ इन अ वाइल. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: मेरी पार्किंग में मेरा पड़ोसी गाड़ी पार्क कर देता है, क्या करूं?
1: व्हाट क्या करूं? इट्स सिंपल ब्रो, थैंक यू बोल उसको, थैंक यू। फ्री वैलेट सर्विस दे रहा है यार वो।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी

0: गई मैं आपको 2011 में, जहां पर शोर इन द सिटी से ये गाना था साइबो, श्रेया घोषाल, तोची राणा की आवाज, और यहाँ मेरी आवाज ऑन मिर्ची कैफे। आप सुन रहे हैं मेरे यानी पारुल के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची कैफे।
0: ये एक गाना है जिसका मुझे सब कुछ ही ऐसे मिक्स होके एकदम ऐसे रिवाइंड हो गया, बिकॉज यू रिमेम्बर दीज लाइंस जो आपने अभी अभी सुनी है, जिनमें आता है सुर्खियां हैं हवाओं में दो दिलों के मिलने की, हाँ अर्जियां हैं नजारों में लम्हा ये थम जाने की, कैसे हुजूर जी ये लब दिखलाए, चुप्पी लगा के भी गजब है ये ढाए, दिस इन द एंटायरिटी What lyrics that give me goosebumps. Sachin Jigar ka music, Sameer ke lyrics. There is something about this song that, just lives here. By the way, kuch aisi kahaniyan bhi hoti hai na hamare saath jo hamesha ghar kar jaati hain aur yaad rehti hain. तो एक ऐसी कहानी मैं आपको बताती हूँ। मेरी एक दोस्त थी, मान लो आप, तो वो मार्केट से निकल के रिक्शा में बैठी, उसके हाथ में पैकेट्स थे, शॉपिंग करके निकली थी, जा रही थी, अचानक से उसको ऐसा रियलाइज हुआ कोई तो है जो उसको पीछे एक बाइक पे फॉलो कर रहा है। फिर उसने कहा कि हाँ भाई, जहां मैं मुड़ रही हूँ, जहां मेरा रिक्शा मुड़ रहा है, तो पीछे आ जा रहा है इस तरीके से, तो ही विल फॉलो मी और मेरे घर तक पहुंच जाएगा, दिस इज सो बैड। तो उसके दिमाग में ना एक वो होने लगी, वो अपने रिक्शे वाले भैया से कहने लगी कि भैया प्लीज थोड़ा तेज चलाओ, ये बंदा ना पीछा कर रहा है। तो थोड़ा सा ही आगे वो लोग गए थे, उसके बाद पीछे से उसने आवाज देनी शुरू कर दी, हेलो मैडम, अरे मैडम सुनिए मैडम। व्हेन शी वाज जस्ट अबाउट टू रीच हर होम, वो बंदा एकदम तेज आगे बाइक निकाल के रिक्शा के आगे रुक गया। इधर मेरी दोस्त की धड़कनें रुक गईं कि ये क्या होने वाला है मेरे साथ। उस बंदे ने निकाल के मेरी दोस्त का फोन उसको दिया और बोला, मैडम मैं इतनी देर से आपके पीछे आ रहा हूँ, आवाज लगा रहा हूँ, आपका फोन वहां गिर गया था जैसे ही आप रिक्शा में बैठी थी। Can you believe it? The way she told me, एकदम exactly मैंने भी आपको उसी तरीके से बताया है। And मुझे लगा कि यार ये दुनिया ऐसी हो गई है ना कि अगर कोई अच्छा भी करने जाएगा हमारे लिए, हमें पहली चीज जो होती है वो शक ही होता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। एक बार हम कोशिश करके देख सकते हैं, as all of us, all of us human beings, तो शायद हम इस प्यारी से दुनिया को वापस अच्छा बना सकेंगे जैसे कि हम सोचते हैं। अगला गाना ओमकारा से आपके लिए, श्रेया घोषाल की आवाज में, और विशाल भारद्वाज ने इसमें तीन रोल्स अदा किए हैं। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ ओमकारा, ही कंपोज्ड द साउंड ट्रैक, और इस गाने में उन्होंने ये मेल पोर्शन भी खुद गाया है। सुनो इस गाने को, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Buscaba la sacabana.
2: Rambala.
1: Burga, burga. La virtual la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
4: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
4: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
4: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
4: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
4: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
4: कच्चा? अच्छा
3: हाँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
4: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
3: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
4: ओके मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
4: कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
4: अच्छा
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
4: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
4: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
4: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
4: कोई बनता पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: या एक काम करो अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
4: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस में लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
4: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
4: अबे कौन बोल रहा है तू?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
4: जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
6: बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
7: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
6: क्यों? वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
7: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
6: ओहो एक्सप्लेन करो जरा।
7: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार्स, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
6: ओह मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस?
7: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
6: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग, लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
8: तो सिर्फ छोरे करें,
9: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के?
10: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: जाने दे।
1: जिन लोगों को भी लगता है ना कि जब वी मेट इम्तियाज अली की सबसे अच्छी सबसे पहली फिल्म थी जिसमें मजा आ गया था हमें, स्पेशली जेंजी, आई थिंक यू मस्ट वॉच अ फिल्म कॉल्ड सोचा न था, जिससे मैं ये गाना लेकर आई हूँ आपके लिए, यारा रब, सोनू निगम और संजीवनी की आवाज में।
2: मिर्ची कैफे
1: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरी आने पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और आपको पता है चमेली फिल्म भी इम्तियाज अली की एज अ लिरिसिस्ट पहले आ गई थी, बट सबसे पहले साइन इम्तियाज अली ने सोचा ना था की थी एज अ लिरिसिस्ट, उन्होंने ही बनाई थी ये फिल्म। अगला गाना जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैफे पर, उसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये फिल्म थी डार्क सुपर नेचुरल थ्रिलर, अगर आपने नहीं देखी तो देखना, वैसे मैंने भी नहीं देखी, आई विल आल्सो वॉच, बट दिस सॉन्ग रिमेन बिकॉज गुलजार साहब के ये लिरिक्स हैं और सुनिधि चौहान, क्लिंटन सेरेजो ने जिस तरीके से ये डुएट गाया है और जिस तरीके से यू नो ये गाना अनफोल्ड होता है और इसके लिरिक्स, मेरी बात सुनो, जस्ट लिसन टू दिस फॉर सुनिधि चौहान एंड गुलजार राइट नाउ, अमेजिंग लिरिक्स हैं, अमेजिंग गाना है। और हाँ, अगर आपको मजेदार गाने ऐसे ही और सुनने हैं, अपने चॉइस के बताने हैं, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो कि मेरे स्टूडियो का है, सामने मुझे दिख रहा है, 7045983983, और आप जनरली चिटचाट कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और ऐसे ही यू नो बहुत सारे गाने भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे ढूंढो paruls.world नाम से, तो हम वहां भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल सुनो ये गाना, अभी आ रही हूँ वापस, अभी जा नहीं रही मैं, listen to this, I'll be back, stay tuned to Mirchi, it's hot.

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: यार आपको अपना एक ऑनेस्ट कन्फेशन बताऊं, जब मैंने ये पहली बार गाना सुना था ना, ऑब्वियसली मैं छोटी थी और मुझे लगा था कि ये जो हरिहरन साहब है ना जो ये गाते हैं, ये लिटरली कोई आसमान में एक व्यक्ति रहते हैं जिनकी इतनी पावरफुल और इतनी स्ट्रांग आवाज है जो दिल तक पहुंचती है। तो ये ना हरिहरन मेरे हिसाब से कहीं स्काई में रहते होते थे।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। चंदा रे सुना आपने सपने फिल्म से साधना सरगम और हरिहरन की आवाज में। ये बहुत ही प्यारी फिल्म थी यार, आई एम श्योर जेन ज़ी ने तो नहीं देखी होगी। कजोल थी इसके अंदर और वेरी डिफरेंट, वेरी कूल फिल्म इट वॉज। प्लीज इसको देखो, जावेद अख्तर साहब ने लिखा था ये लिरिक्स, यू नो। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग, राशिद अली वसुंधरा दास की आवाज। ये जो फिल्म थी ना जाने तो ये जाने ना, रहमान सर का म्यूजिक है इसके अंदर और अब्बास ने लिखे हैं लिरिक्स। इस पिक्चर को अगर आपने नहीं देखा है अभी तक जाने तो ये जाने ना, तो ड्रॉप एवरीथिंग एंड वॉच दिस फिल्म फॉर द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड द ब्यूटी ऑफ लव। क्योंकि जेनेलिया डिसूज़ा और इमरान खान की ये पिक्चर, तो यार ये बड़ी ही खूबसूरत पिक्चर थी और इसके बड़े सारे गाने हैं जो बड़े अच्छे हैं, ऑफ कोर्स रहमान सर का म्यूजिक, लेकिन ये ना ऐसे ठहरा हुआ प्यारा सा गाना है जो हम सबको स्पेशली वो वाला जो आजकल के वर्ड्स में कहते हैं सिचुएशनशिप या आई डोंट नो, लेकिन होता है ना कि कभी आपका कोई दोस्त है लेकिन आपको रियलाइज होता है कि वो दोस्त किसी रिलेशनशिप में चला गया है, तब आप सोचते हो कि इतनी जेलस क्यों हो रही हूँ मैं, या हो रहा हूँ मैं, या मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है कि ये इंसान मेरे साथ क्यों नहीं है उतना जितना पहले होता था। बट यस, दिस सॉन्ग इज स्पेशल। सुनो इसको ओनली ऑन मिर्ची कैफे। मिलती हूँ आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: जिनेलिया एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
3: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए।
4: अलार्म लगा है। ओ कॉल, हेलो जिनेलिया, सॉरी यार, टाइम हो गया, सॉरी।
3: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
2: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
1: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
7: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: क्यों हो गया ना नाम की एक फिल्म थी 2004 में आई थी। जावेद अख्तर साहब ने इसके लिरिक्स लिखे हैं अगेन साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज में। इफ यू रिमेम्बर द फिल्म, इसमें विवेक ओबरॉय एंड ऐश्वर्या राय, यस दोज टाइम्स, तब की पिक्चर थी। और मुझे ना ये गाना बहुत पसंद आता था, ये इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया क्योंकि मेरे जैसी बड़ी सारी लड़कियां होंगी आई एम श्योर, जिन्होंने ऐश्वर्या को इन अ हैप्पी रोमांटिक फीलिंग डांस करते हुए देखा इस गाने पे, एंड यू रिमेम्बर दिस सॉन्ग।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरी आने पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। अगर आपको याद आया हो ये गाना और उस वक्त आप क्या कर रहे थे, प्लीज डू राइट टू मी। पारुल्स डॉट वर्ल्ड इज माय इंस्टाग्राम आईडी एंड नंबर है मेरा 7045983983। ठीक है, जरूर लिखो। और कोई गाना अगर आप सुनना चाहते हो अगले एपिसोड में, प्लीज वो भी मुझे जरूर लिखो। और जाते जाते मैं आपको बताऊंगी एक बहुत प्यारी कहानी। एक बार क्या होता है, एक लड़की है वो लाइब्रेरी में जाती है, थोड़ी एंग्शियस है, थोड़ी परेशान है, एग्जाम्स आने वाले हैं, पर्सनल लाइफ में भी इधर उधर चल रहा है, और वो एज होती है ना जब मम्मी पापा से भी थोड़ा झगड़ा चल रहा है, ऑल दोज थिंग्स। तो उस लड़की के पापा ने उसको बताया होता था कि एक लाइब्रेरी है जहाँ वो बहुत जाते थे इन हिज चाइल्डहुड एंड कॉलेजहुड। तो वो लड़की ना उस दिन उस लाइब्रेरी में जाती है बैठ के सुकून से पढ़ने के लिए। सो जब वो उस बुक को पढ़ रही होती है, पेज पलट रही होती है, वो देखती है कि उसमें कुछ तो लिखा हुआ है एक छोटा सा। सो इन अ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग इट वॉज रिटन, डोंट गिव अप एवर। और आपको पता है नीचे क्या लिखा होता है, नीचे उसके फादर के सिग्नेचर्स होते हैं। तो यू नो जब उसके पापा उस लाइब्रेरी में जाते होते थे, वन फाइन डे पता नहीं क्यों उन्होंने वो लिख दिया होगा, लेकिन जब उस लड़की को अनजाने वो नोट मिलता है और अपने डैड के सिग्नेचर्स किया हुआ वो, सो होता ना कभी कभी कि हम किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, शायद घर वालों से भी नहीं कह रहे हैं कि हम क्या गो थ्रू कर रहे हैं, ना हेड्स इन आर माइंड्स इन आर हार्ट्स, और ऐसी कोई चीज मिल जाए वो रिस्टोर कर देती है सारा हैप्पीनेस और होप और फेथ। सो दीज स्टोरीज व्हेन आई रीड आई लव देम, और मुझे लगता है कि मैं जरूर आपको सुनाऊं। तो जाते जाते ये कहानी मैं आपके साथ छोड़ के जाना चाहती थी, एंड यू नो विद सच थिंग्स यू जस्ट वॉन्ट टू फील। तो अगला गाना जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, शान और साधना सरगम की आवाज में, द सॉन्ग सेज कुछ ना कहो। तो आप भी कुछ ना कहो और सुनते रहो मिर्ची। स्टे ट्यून्ड, मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में बहुत जल्द। मेरा नाम है पारुल, शो है मिर्ची कैफे। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
0: यार एक बात मुझे समझाती नहीं है, कोई भी मूवी डाउनलोड करूँ प्रिंट हमेशा खराब निकलती है, क्या करूँ?
1: अबे तेरे को पता ही है कि हमेशा खराब निकलती है, तो तू प्रिंटर बदल देना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और जिंदगी से कोई शख्स चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसकी याद चली जाए ओहो हो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जलील अली साहब का शेर है आपकी नजर किया कि दिल आबाद कहां रह पाए उसकी याद भुला देने से, दिल आबाद कहां रह पाए उसकी याद भुला देने से, कमरा वीरा हो जाता है एक तस्वीर हटा देने से। आय हाय हाय हाय कितना सच है कि शख्स चला जाए बिल्कुल, लेकिन उसकी याद की एक दुनिया जो पलती रहती है आपके जहन में, एक दिन जब आप उसकी याद से भी उबर जाते हो वो अकेलापन कुछ अलग ही होता है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो हेलो
4: सर वेरी गुड इवनिंग मैं बैंक से बोल रहा हूँ।
3: हाँ बोलिए
4: सर। आई एम सो सॉरी सर बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात है
4: सर, आई एम सो सॉरी पूरा बताइए
3: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया
4: सर? आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो
4: आई एम सो सॉरी सर। सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
3: पागल पागल है
4: अब तो देने पड़ेंगे सर।
3: हेलो
4: अब तो देने अब तो फंस गए देने पड़ेंगे अब तो फंस गए देने पड़ेंगे।
3: कौन बोल रहा है? विपिन?
4: नहीं सर अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
3: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? पैसे देने पड़ेंगे पैसे?
4: अब तो फंस गए सर।
3: हेलो
5: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ। सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है।
3: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
5: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
3: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
5: हाँ जी। अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: यार बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
7: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
6: क्यों, वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
7: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
6: ओहो एक्सप्लेन करो जरा।
7: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
6: मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस?
7: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
6: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग, लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
8: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
9: 89.6
0: FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और अब इस महफिल में वक्त है
0: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपको मुखातिब कराएं हमारे आधुनिक हिंदी कविता के एक बड़े ही प्रमुख कवि और कथाकार से। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ केदारनाथ अग्रवाल जी की, जो कि बड़े सोशलिस्ट आइडियाज पे लिखा करते थे। साहित्य अकादमी के पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया और मेरी एक बड़ी ही पसंदीदा कविता है केदारनाथ जी की, जो उनकी विजुअल राइटिंग स्किल्स को दर्शाती है। केदारनाथ जी लिखते हैं कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। वाह जी वाह, दिल खुश कर देता यार, इमेजरी हो तो ऐसी। सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार. तूने सुना एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया.
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है. और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी.
0: मिर्ची, इट्स हॉट.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और जिस तरीके का माहौल है दुनिया में, हमारे देश में, उसमें ना प्रेम की शायरी करते हुए भी थोड़ी सी शर्म आती है, क्योंकि आप कब तक अपने दिल को अहमियत देते रहेंगे जब आपकी जो आसपास की दुनिया है उसको आपकी नजर चाहिए, उसको आपका एफर्ट चाहिए। अख्तर शिरानी साहब का शेर देखें, कहते हैं कि गमे जमाना ने मजबूर कर दिया वरना, गमे जमाना ने मजबूर कर दिया वरना, ये आरजू थी कि बस तेरी आरजू करते। आय हाय हाय हाय हाय, क्या सटीक बात है। गमे जमाना ने मजबूर कर दिया वरना, ये आरजू थी कि बस तेरी आरजू करते। अब तो बहुत सी आरजू है दिल में, है कि नहीं। आप कताशी है आपके साथ, मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
4: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगेन एज रेडियो जॉकी। करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
5: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था। बहुत मजा आता था, मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
3: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: नहीं, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
7: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
8: कैसे रुक सकता है?
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: on Mirchi. It's hot.
1: और कुछ गाने आपकी ज़हन में बैठ जाते हैं यार.
2: Mirchi महफ़िल पे. ताशी. Unplugged.
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ. और हाँ जी, अब वक्त है आज का ताशी अनप्लग्ड आपको सुनाने का. और ये जो कलाम है ये एक सूफी कलाम है. और सूफी लोग बड़े इंटरेस्टिंग मुझे लगते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं सारे रिलीजन्स के बीच में एक जगह है जहाँ पे वो रहते हैं. वो सबके दरमियाँ हैं लेकिन वो किसी के भी पूरे नहीं हैं. आई रियली लाइक द सूफी फिलॉसफी बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लव. बहरहाल पेशे खिदमत है सिर्फ आपके लिए.

वाह जी वाह, दिल खुद ही शांत हो जाता है, दिल खुद ही एक जगह पे ऐसी चला जाता है जो कि बहुत ही सफेद, बहुत ही प्योर है। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहें अपने ताशी के साथ। और अगर ऐसी गजलें नगमे और सुनना चाहें तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHI TASHI पर। यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: मुझे लंबे नाखून पसंद है पर मैं हमेशा उन्हें चबा लेती हूँ, क्या करूँ?
1: अरे चबा के खाना तो अच्छी बात है, कीप इट अप। और चाहिए तो ब्यूटी पार्लर चली जा, बहुत वैरायटी है उनके पास।
2: खोपड़ी तोड़।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और मेरी ना हमेशा सबसे जो कोर मेमोरी है वो क्या होता था कि घर वाले पूजा कर रहे होते थे दिवाली के वक्त, मुझे जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि ये लो मोमबत्ती और पूरे घर में जाके लगाओ। अब पता नहीं कैसे पर दिवाली की जो रात होती थी शाम होती

थी, उसमें हवाएं तेज चलने लग जाती थी बड़े रैंडमली, है ना, और मोमबत्ती की जो लौ थी वो ऐसे ऐसे झूलती थी। उसी पे एक बड़ा सटीक शेर है और नुशूर वाहिदी साहब का शेर है, और ये सिखाता है कि जीवन में कैसे कुछ भी पक्का नहीं है। हस्ती का नजारा क्या कहिए, मरता है कोई जीता है कोई। हस्ती का नजारा क्या कहिए, मरता है कोई जीता है कोई। जैसे कि दिवाली हो कि दिया जलता जाए बुझता जाए। आय हाय हाय हाय हाय, मतलब एकदम मेरे सामने आ गई वो इमेज यार, वो जो लॉ लड़ रही होती है ना जब हवा से कि नहीं मुझे जिंदा रहना है, मैं होंगी बड़ी, और हस्ती का नजारा क्या कहिए, मरता है कोई जीता है कोई। जैसे कि दिवाली हो कि दिया जलता जाए बुझता जाए। और इंटरेस्टिंग एक पहलू ये भी है कि दिया जितना जलता है उतना बुझने के करीब आता है, क्योंकि तेल खत्म होता जाता है, है ना। तो जिंदगी का खेल यही है दोस्त, जितना वक्त मिला है मजे में बिता लो। स्टेडियम टू मिर्ची, आपका दाशी आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Nafiyat wala murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ।
3: हाँ जी, हेलो।
4: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
4: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 3rd K 35/14A, 1st फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
3: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
3: मेरा सनशाइन कैंसिल है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
4: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
4: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है। आप मेरे को क्यों बता रहे हो, ब्लड ग्रुप बताइए।
3: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
4: तो मैं आपको, अरे मैडम
3: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
4: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? क्या नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो
3: मेरा।
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं।
4: दोबारा कॉल करेंगे, आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे किस्सा कॉर्नर।
1: कि आपका ताशी नजर करे आज का किस्सा जो आ रहा है कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर की जानिब से। लिखते हैं कि 1975 के एक ऑल इंडिया मुशायरे में एक नौजवान शायरा ने अपने हुस्न और तरन्नुम के तुफैल शिरकत का मौका हासिल कर लिया था। जब मौसुफा ने गजल पढ़ी तो सारे सुनने वाले झूम उठे। गजल भी अच्छी थी लेकिन अनजाने में उस शायरा ने प्रोनंसिएशन की कई गलतियां कर दी तो कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर ताड़ गए कि गजल किसी और की है। गजल सुनाने के बाद जब मौसुफा अपनी नशिस्त पर वापस आकर जलवागर हुई तो एक मद्दा शायर ने उनसे कहा, मोहतरमा आपके कलाम ने वाकई मुशायरा लूट लिया। इस पर सहर साहब खामोश न रह सके, बर्जस्ता कह उठे, यूं कहिए बरखुदार की मोहतरमा ने मुशायरा लूट लिया, बेचारी गजल पर तो इल्जाम न लगाइए। ये सुनकर मद्दा और शायर दोनों जबरदस्ती की हंसी हंसकर चुप हो गए। अब भाई साहब तंज कसने में शायरों की जो स्किल है ना वो नेक्स्ट लेवल की होती है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि शायर केवल रोमानी बातचीत करते हैं, रूहानी बातचीत करते हैं, केवल ओहो प्यार इश्क यही सब चलता रहता है तो गलत फहमी है आपकी। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने दाशी के साथ। यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका दाशी है आपके साथ। और एक चीज जो मैंने बड़े होते होते सीखी है कि अपनी ना खुशियां ज्यादा गानी नहीं चाहिए, जमाने को ज्यादा अपनी खुशियां, लोगों को ज्यादा अपनी खुशियां बतानी नहीं चाहिए। क्योंकि अब कफील आज़र अमरोवी साहब का शेर देखें आप, उसी से सिखा दूं शायद मैं आपको कि मकां शीशे का बनवाते हो आज़र, मकां शीशे का बनवाते हो आज़र, बहुत आएंगे पत्थर देख लेना। सच है, उदासी का समुंदर देख लेना, मेरी आंखों में आकर देख लेना। तो इसीलिए अपनी खुशियों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, खुशियाँ एक्सपीरियंस करो एंड खुश रहो, ज़्यादा गाओ मत उनके बारे में ज़माने से। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, ताशी है आपके साथ।

0: Mirchi, it's hot. Hello Sharps, our product is phenomenal. One of a kind, but still profit नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं
1: Office के toilet में toilet paper white नहीं, yellow लगाओ, profit आएगा.
0: Relative से advice लो तो कहते हैं
2: काम को time दो, 25 घंटे काम करो, dark circles होंगे तो future bright होगा.
0: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो.
3: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
4: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now 7070-7687.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि आप कताशी पलटे अपने डायरी के सफ़े और कर दे आपकी नजर बिल्कुल। और जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जिस इंसान से इश्क कर रहे होते हैं सबको पता होता है कि आप उससे इश्क करते हैं, बस उस इंसान को नहीं पता होता है। बिल्कुल यार ऐसा भी होता है कभी कभी। वो मीर तकी मीर साहब का शेर याद आता है मुझे कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। अब बताओ कितना मुश्किल सा कनिंड्रम है ना, जिसको जिससे प्यार करते हो वो ही नहीं जानता बस। लेकिन फिर मैंने ये भी सुना है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। मेरे ख्याल से उसको पता है, वो जानना चाह नहीं रहा है, और इसमें एक और उदासी आ जाती है कि नहीं। बहरहाल बड़ा खूबसूरत शेर लगता है मुझे ये, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। मैं कहूंगा मूव ऑन एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: शोर
1: भूल गए
2: जानी मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडलबाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: प्यार का मौसम
1: बेशरम

0: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
1: यार एक बात मुझे समझाती नहीं है, कोई भी मूवी डाउनलोड करो प्रिंट हमेशा खराब निकलती है, क्या करूँ?
0: अबे तेरे को पता ही है कि हमेशा खराब निकलती है, तो तू प्रिंटर बदल देना।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और जब किसी से आप सच में प्यार करते हैं या फिर किसी को आप सच में अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, तो आपको ये लगता है कि यार वो शख्स तो कम से कम मुझे सच में देखे, मुझे जाने। मोहम्मद अलवी साहब का एक शेर नजर करता हूं आपके लिए। कहते हैं कि रखते हो अगर आंख तो बाहर से ना देखो, रखते हो अगर आंख तो बाहर से ना देखो, देखो मुझे अंदर से बहुत टूट चुका हूं। और सच में यार हमें क्या चाहिए, एक ऐसा शख्स चाहिए जिंदगी में जो हमारा सच देख पाए, जो देख पाए वो जो हम कह ना पाए। क्या ये बहुत ज्यादा है मांगने के लिए? रखते हो अगर आंख तो बाहर से ना देखो, देखो मुझे अंदर से बहुत टूट चुका हूं। स्टेडियम टू मिर्ची, ताशी आपके साथ।

0: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया हेलो।
1: Who's this?
0: और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे Who's this?
1: कौन बोल रहा है
0: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
0: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
2: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
5: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
7: 89.6 FM Mirchi 1 Mirchi 1 It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि आप कताशी आपको मुखातिब कराए हमारे आज के लव्स से जो है खुददार। खुददार का मतलब होता है someone who has self respect। खुददार से एक और लफ्ज निकलता है खुददारी, जिसके अंदर self respect हो। और सेंटेंस में अगर इस्तेमाल करूं तो मैं कहूंगा कि यार ईशान कभी पैसे नहीं मांगेगा, वो बहुत खुददार इंसान है, है ना। और अगर आप कहें कि एक शेर सुना दो जिसमें खुददार का इस्तेमाल हो रहा हो, तो मैं आपको मोहसिन नकवी साहब का एक शेर सुनाता हूं। चलिए, कहते हैं कि सिर्फ हाथों को ना देखो कभी आंखें भी पढ़ो, सिर्फ हाथों को ना देखो कभी आंखें भी पढ़ो, कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। वाह जी वाह, कितने अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से कह दिया है कि कुछ लोग जबान से अपने हाव भाव से नहीं कह पाते कि उन्हें कुछ चाहिए, कुछ लोग आंखों ही आंखों में कुछ मांग रहे होते हैं। उनकी मांग को उनकी आंखों में देखो, क्योंकि वो मुंह से तो कभी नहीं बोलेंगे। सिर्फ हाथों को ना देखो कभी आंखें भी पढ़ो, कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। तो जस्ट लाइक दैट एक और लफ्ज आपको आ गया है, विच इज खुददार, विच मीन्स समवन हु हैज सेल्फ रिस्पेक्ट। और सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या कहते हैं? खुददारी। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आप कथाशी है आपके साथ, और जिंदगी में एक दौर आएगा जब आप अपने कंफर्ट जोन में कैद हो जाएंगे। ये कंफर्ट जोन एक बड़ी ही अजीब सी कैद है, बड़ी आरामदायक कैद है। इस कैद में कैद सा नहीं लगता। मुझे सलीम कौसर साहब का वो शेर याद आता है कि कुर्बते होते हुए भी फासलों में कैद हैं। कुर्बते मतलब नजदीकियां। कुर्बते होते हुए भी फासलों में कैद हैं, कितनी आजादी से हम अपनी हदों में कैद हैं। आय हाय, इतनी खूबसूरत लाइन लगती है ना मुझे ये, कितनी आजादी से हम अपनी हदों में कैद हैं। याद रखें, कैद आरामदायक भी हो सकती है। स्टेडियम टू मिर्ची, ताशी आपके साथ। It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: जिनीलिया देशमुख
4: आर यू अ ऑनेस्ट क्रिटिक
5: आई एम एन ऑनेस्ट क्रिटिक बट आई एम आल्सो गुड फॉर योर ईगो
4: अरे क्या बात है
5: like even if you're my friend and
4: मुझे वैलिडेट कर ले यार हेलो जिनीलिया आई एम नॉट फीलिंग ग्रेट
5: यू
4: आर क्वीन Where's your crown?
3: She's an honest critic, but a very funny person also. Ye thi Jinilia Deshmukh on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Bol Dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bol Dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
6: Our business is our business. None of your business.
7: पर दीदी आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: और वक्त हो चला है मेरे जाने का।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: लेकिन जाने से पहले ताशी अनप्लग्ड में आज एक ऐसा सूफी नगमा आपको नजर कर रहा हूं मैं, जो कि मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि जो उसकी लिरिक्स है ना वो ऐसी कुछ है और उसकी ट्यून है जो वो ऐसी कुछ है, मैं उसको गाता हूं तो मैं कहीं और चला जाता हूं। तो ज्यादा वक्त जाया करे बगैर पेशे खिदमत है आपके उनके अंदाज़े करम।

जी, और इसी के साथ मिर्ची महफिल का आज का सफर यहीं तक था। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहे मिर्ची के साथ। एक से बढ़कर एक गाने सुनाते हैं हम लोग, यही है हमारा वादा। ताशी था आपके साथ, एंड यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: Mirchi Helpline?
1: Mirchi Helpline, what is the question?
0: यार ये धूप इतनी है कि साइलेंसर से ज्यादा तो सीट गर्म हो जाती है, क्या करूँ?
1: अरे गोचू, तो एक काम करना, साइलेंसर पे बैठ के चला जा, सिंपल।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।

अरे टोली बना के निकले ग्वाले करने को हुड़दंग, गोविंदा के दिन सब हो गए हैं, गोविंदा के संग। अरे समझे,

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: 89.6 Mirchi.